0: मंडळी, विज्ञानविषयी अधिक रंजक आणि सोपा करून सांगितला जातो तो विज्ञान कथांमधून. मराठी.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए. श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने. परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया. इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था जो भारत और सेशल्स के करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है. विशेष पहल के तहत युद्ध पोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है. प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी. श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे. भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है. हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है. श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी. इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है.
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है. भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहाँ समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें.
1: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया. प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की. दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की. उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं. ये प्रतिनिधि मंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इनक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे. ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन, विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं. महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है. 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है. गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू होगा. इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है. भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया. निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी. ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi attended the National Day celebrations marking the 50th Indian Prime Minister to be accorded this honour. An Indian marching contingent comprising Navy and Army teams participated in the parade. An Indian naval band also formed part.

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना

0: Yan Sampanikya. अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
1: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन, महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
2: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल है। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मोज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
3: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में

0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार की कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
1: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, UAE, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय MSME, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं GFSC जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
0: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
2: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्न पत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेन देन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। TET परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से 1 दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ACB ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉक्टर वत्सला अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
3: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
4: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच बाहरी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइको डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉक्टर रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112317 और 0112314444। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 6 आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू। कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नव भारत टाइम्स की खबर है। देशबंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता। हिंदुस्तान ने मानसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मानसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है, अलबत्ता दलहन और तिलहन पर अल नीनो का असर पड़ेगा। लोकसत्य ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1,500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा। बहरीन कुवैत पर फिर हमला, राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, ईरान नहीं सुधरा तो वजूद मिटा देंगे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने अनोखा फॉर्मूला शीर्षक से नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के विशेषज्ञों की अपील से जुड़ा समाचार दिया है। पत्र लिखता है, माँ के लिए चाय की प्याली हो, बच्चे की सेहत की रखवाली भी हो, माँ को चाय में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 देने का सुझाव, अपंगता की बीमारी से बच सकेंगे नवजात।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi attends Seychelles National Day celebrations as guest of honour. Also holds talks with his Mauritius counterpart Naveen Chandra Ramgulam. United States and Iran agree to halt counter-strikes and resume talks in Qatar's capital, Doha, tomorrow. President Draupadi Murmu to present gallantry awards at Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan today. IMD issues red alert for very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in hockey, India beat England.

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, सुन रहे हो आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। सीधा सीधा प्रसारण आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी के डीआरएम पर भी सुन सकते हो। मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे मृन्मयी मनहजा। अभी सुबह 8:40 से लेकर सुबह 11 बजे तक सबसे पहले हमेशा की तरह मस्त मुंबई में, आज क्योंकि 29 जून है और आज है सोमवार, यानी मंडे ब्लूज, जो आपके मन में थोड़ा सा दुख है उसको हम दूर करेंगे ना, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। मुंबई के मस्ताने है आज का विषय सोमवार, जिसमें क्या कुछ खास हुआ है सब पे बातें होंगी। फिलहाल तो बारिश हमें हेलो हाय बोल ही चुकी है और इसी के साथ शुरुआत करते हैं।

8657661071 FM Rainbow, Mumbai का WhatsApp number.

0: तो बारिश का मौसम। सोहम नायक की आवाज में जयान के लिरिक्स है, सुन रहे हो 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।
1: कॉस्मोस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
2: इंटरनेट बैंकिंग,
1: मोबाइल बैंकिंग,
2: व्हाट्सएप बैंकिंग,
1: ईकेवाईसी,
2: एनईएफटी, आरटीजीएस,
1: आईएमपीएस,
2: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
1: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
3: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
4: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
3: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
4: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी ओटीपी आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
5: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

0: धीरे धीरे रे मना, मनमस्त कबीरा बैजू मंगेशकर की आवाज में सुन रहे हो।
1: कुछ
2: ये है आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर, मुंबई का सबसे पहला FM चैनल।
0: और किसने लिखा है ये कहने की जरूरत तो है नहीं, ये बोल हैं संत गुरु कबीर उनकी। और ज्येष्ठ पूर्णिमा आज माना जाता है, दिवस नाना पूर्णिमा है। आपको वैसे बहुत डिटेल में बताऊंगी ही कि क्या होता है उड़ीसा में हमारे नमस्ते भारत में, लेकिन फिलहाल आज ही के दिन कबीर जी की भी जयंती मनाई जाती है। और अभी जो सुना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए तो फल होए। यानी कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, चाहे कितना भी पानी डाल लो, ओवर वाटरिंग हो जाएगी, प्लांट्स वैसे ही मर जाते हैं ना, पौधे आपके घर में, पता है मुझे। तो वो क्या होता है कि जब तक ऋतु ना आए, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कभी कभी उदास नहीं होना चाहिए। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, तो बस सुबह सुबह थोड़ा सा, सोमवार के दिन जब बहुत सारी चिंताएं लेके चल रहे हो, ऐसा कुछ होता है तो हल्की सी मुस्कान ज़बरदस्ती अपने चेहरे पे डाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चिंता ऐसी डाकिनी काटी करे जा खाए, वैद बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा लगाए। चिंतामणि, ये जो चिंता है ना, टेंशंस, टेंशन, 10 बेटों को जैसे पकड़ के रखते वो वाला, तो ऐसे तनाव के साथ, चिंता के साथ रहोगे तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसका जो है इंसान के अंदर कोई इलाज है ही नहीं। अंदर से आप खोखले हो जाते हो और डॉक्टर बेचारा करे तो क्या करे। तो यही सोच कबीर के प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे प्रेरणादायक सोच के साथ दिन की शुरुआत। आगे और आज क्या क्या खास है, सारी बातें बताऊंगी। वैसे भी आज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है, नहीं? सुन रहे हो FM रेनबो मुंबई, अपनी आरजे मृन्मयी मनजा के साथ।

सुबह सुबह मुंबई के मस्तानी अपनी धुन में मस्त होना। ये बदलापुर का गाना जुदाई चदरिया झीनी रे झीनी। रेखा भारद्वाज और अरिजीत सिंह की आवाज भी सुन रहे थे। सचिन जिगर का म्यूजिक है और जाहिर सी बात है कि ये जो शरीर है ये आत्मा है, बहुत ही बारीकी से सूक्ष्मता के साथ यानी झीनी झीनी बनाई गई है। ऊपर वाले ने क्या प्यार से क्या सोच समझ के बनाई है। तो ऐसे ही प्यारे प्यारे ख्यालों के साथ मंडे ब्लूज को एकदम लात मार के बाय बाय बोलते हुए आगे बढ़ते हैं। आज वैसे भी कई सारे अंकों का दिन है, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे है 29 जून को, सांख्यिकी दिवस। अब ये देखा जाए तो कैसे नहीं होता, जब बायोलॉजी से बहुत डर लग रहा होता है तो बच्चे पीसीएम के साथ बस स्टैटिस्टिक्स लेके बैठ जाते मेरी तरह। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें सीखने वाली, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ ये गणित है, इसमें कई सारे अंक रहते हैं, कई सारे हिसाब किताब आपको करने पड़ते हैं। और जिंदगी के उस पड़ाव में जहां हम सोशल मीडिया ट्रेंड्स के बारे में बात करते ही हैं, जहां कुछ लोग उस पड़ाव पे आकर खड़े हुए हैं जहां अपनी फोटो से ज़्यादा एक्सरे की फ़ोटो या फिर जो ब्लड रिपोर्ट्स हैं आपके, रक्त की जांच हुई है उसके फोटोज़, आपका HbA1c वगैरह सब कुछ मतलब सही है कि नहीं वो ज़्यादा मायने रखता है ना। तो उन्हीं चीज़ों में कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि असौत के ऊपर होती हैं, यानी एवरेजेस। सबसे एक सरल सा मैंने उदाहरण दिया है आपको असौत वाला, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में वैसे बहुत कुछ है। पर इससे ये पता चलता है कि अगर एक दिन या एक महीना अपने सेहत को सही सही लेके चल लोगे ना मंडे मोटिवेशन के साथ, तो और बाकी के 2 महीने ऐसे ही छोड़ दोगे तो रिपोर्ट जो है वो एवरेज पे निकलती है मेरी जान, कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैथ्स में डब्बा गुल नहीं होना चाहिए।

0: ये गाना आ रहा है आपके पास थोड़ी देर में।
1: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और एफडी के ढेर सारे विकल्प।
2: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
0: नील बटे सन्नाटा फिल्म से रोहन उत्पत, आरती शर्मा।

जिंदगी कितनी खूबसूरत है, इस खूबसूरत जिंदगी में अपना रंग मिलाइए और देखिए ये जिंदगी और भी हसीन है। 107.1 FM Rainbow, musically yours.

क्यों करें हम तुमसे प्यार, ऐसा कभी कभी हम ऐसे विषयों को बोल देते हैं जो बहुत कठिन लगते हैं। नितेश तिवारी की म्यूजिक सुन रहे थे मैथ्स में डब्बा गुल, उसके बाद बेशरम का ये गाना था दिल का जो हाल है, कैसे बयां करें। अमिताभ भट्टाचार्य और श्रेया घोषाल, राजीव वर्णवाल ने इसे लिखा है और ललित पंडित का म्यूजिक। आप सुन रहे हो FM रेनबो मुंबई, 9:11 हो रहे और बारिश का जो हाल है, रात भर से बारिश हो रही है। आप सभी के मैसेजेस मुझ तक पहुंच रहे हैं, एकदम लाइव सीधा प्रसारण चल रहा है 8657661071। और मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, आय हाय एक मछली पानी में गई, तो वो वाला हाल है। आज मछुआरों का दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल फिशरमैन डे है, और कभी कभी ये चीज़ें हम तक पहुंचती नहीं है, हमें अता पता नहीं होता, और इसीलिए तो मिलकर सुनते हैं।

रेडियो जहाँ ढूंढ ढूंढ के आज क्या क्या खास है, अच्छी अच्छी बातें आपको बताते रहते हैं। मैं भी वैसे आज मछली मछली बन के आई हूँ, मतलब हस्तकला मछली पहन कर आई हूँ। तो ये गाना वैसे थोड़ा सा मस्ती में मूड को और जोशीला बनाने के लिए।

टाइम टाइम फिश हो ही जाती है, वो अभिजीत भट्टाचार्य है हमारे, ऑफकोर्स अभिजीत। पर कभी कभी दफ्तर में ऐसे ही काम करते करते ध्यान कहीं खो गया हो तो टाइम टाइम फिश हो ही जाती है।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना।
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
1: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
2: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
3: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

9:20 हो रहे हैं। ये गाना सुन रहे थे सरकार राज से रूप कुमार राठौड़ और श्वेता पंडित, प्रशांत पांडे के लिरिक्स हैं। वैसे भी आजकल सोशल मीडिया में तो रूप कुमार राठौड़ का वो जो लाइव म्यूजिक है काफ़ी ट्रेंड कर रहा है ना। कई बार हमें ऐसे ऐसे गायक वापस पसंद आ जाते हैं जब हम उन्हें दोबारा से सुनते हैं। इस वक्त सुन रहे हो मुंबई के मस्ताने मस्त मुंबई में अपनी आरजे मृन्मयी मनजा के साथ। और सोमवार के दिन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उसे कहते हैं प्रेरणा मोटिवेशन। तो आज हमने ढेर सारी बातें करी ही, कबीर जी की जयंती के साथ बोला ही था कि आपको चिंता जो है वो छोड़ देनी चाहिए। वहीं साथ साथ क्योंकि विश्व नहीं, हमारा नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है, तो इसीलिए आज जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको स्टेटिस्टिक्स का आज मनाने वाला दिन है। साथ ही साथ हमारी अचीवमेंट्स की बात करें तो इतना कुछ अच्छा चल रहा है। आप जब भी कोई खबर देखने को निकलते हैं पिछले कुछ हफ्तों में क्या नहीं हो रहा, जब देखो इंडिया गोल्ड पे गोल्ड जीते जा रहे हैं, मतलब

पुरस्कार खेल जगत में अलग ही चरम सीमा पर है। और वहीं मौसम की बात करें तो मुंबई का जो चक्कर है मौसम के साथ, इस बार तो बारिश को जैसे घना ना बोल के बुलाना ही पड़ा, वो वाला हाल हो गया। नहीं आने के बाद लेकिन आज के क्या हाल चाल है वो भी तो बात करनी चाहिए कि नहीं। तो सुबह 8 बजे जो मौसम विभाग कह रहा है कि ऐसे तो बादल छाए रहेंगे और थोड़ा बहुत जो है बादल के साथ साथ मध्यम मध्यम बारिश, मिस वर्षा भी आने वाली है मिस्टर बादल के साथ, तो थोड़ी सी आंधी तूफान की संभावना भी है ये मुंबई शहर में और आसपास में सिटी और सबर्ब्स में हो सकता है। तो जैसे कल मैं जैसे आपके साथ बात करने के लिए आने वाली थी तो सोच रही थी क्या होगा क्या नहीं, बारिश तो आज नहीं है तो फिर कैसे, पर वहीं रास्ते में हर एक जगह पे इतनी बारिश। और मिस्टर कुकर जी वो भी निकले थे वॉक पे सुबह से, वहाँ मरीन ड्राइव पे ऐसे दो देखा मैंने, तो रेनकोट पहन के निकले थे, एक जो है पीले वाले रेनकोट में एक नीले वाले रेनकोट में। बारिश क्या क्या दिखाती है ना।

0: आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं 8656 6601 के जरिए हमारा एफएम रेनबो मुंबई का व्हाट्सएप नंबर, साथ ही साथ स्टूडियो की लाइंस भी हैं जिस पर आपने अभी कॉल किया था। और क्योंकि सीधा प्रसारण रहता है तो जब मैं आपसे बात कर रही होती हूँ तो ऑन एयर नहीं होती, और जब आकाशवाणी पर ऑन एयर होती हूँ तो जाहिर सी बात है कि फ़ोन नहीं उठा सकती। 022 हमारा एसटीडी कोड रहता है, 4515 4132 4515 4133। तो बस कुछ बहुत ही मज़ेदार सी बातें हुई हैं, उन सब पर हम जिक्र ज़रूर करेंगे थोड़ी ही देर में। लेकिन आज पता है और क्या खास है, वो भी पहले बता दूँ। कैमरा, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना, घूम फिर के अपने फ़ोन में वहीं पहुंच जाते हैं। यहाँ तक के फ़ोन खरीदने का जो हमारा फैसला होता है वो भी इसी पर कहीं ना कहीं निर्भर करता है कि कैमरा कैसा है। बहुत सारे लोगों के लिए वो बहुत मायने रखता है। और जब फ़ोन भी नहीं थे, स्मार्टफोन्स नहीं थे, तब मतलब आजकल के जेंजी को लगता होगा ना कि क्या बात कर रहे हो आप लोग, डिजिटल कैमरा लेके घूमते थे। और उससे भी अगर पीछे जाएं तो हमारे बचपन में जब हमें भी नहीं पता कि रील लगाकर कैमरा में ये लोग फ़ोटो खींचते थे, और बच्चों के जैसे हर एक साल में अगर आप एक एक फ़ोटो खींच रहे हो, मतलब समझ रही हूँ मैं, आजकल 200 सेल्फी लेने वालों के लिए ये बात हजम करना कितना मुश्किल है, लेकिन हाँ ऐसा भी होता था, लोग इतने इतने समय में एक फ़ोटो खींचते थे, और वो भी अगर रील बराबर से नहीं लगी हो तो पूरा मतलब जा सकता है। आज भी देखो कभी कभी ढेर सारे मैसेजेस आए होंगे आपके किसी भी ऐप पर, और चलो आपने डाउनलोड नहीं किया होगा, तो अचानक से कैसे नहीं लगता कि सब कुछ लेट गो करना पड़ता है, सब कुछ छोड़ना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। बहुत दुख होता है क्योंकि एक एक तस्वीर में हमारी इतनी सारी यादें जुड़ी होती हैं, हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं। बस किसी तरह अपने दिल को संभाल के आगे बढ़ते हैं। और जहां वीडियोस की दुनिया में कैमरा का वही एक चीज़ है कि एक पल, एक क्षण को बस खींच के, ऐसे संजो के, बस सांभ के रख लेते हैं ना अपने दिल के पास।
1: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
2: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
1: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
3: ये है आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर, मुंबई का सबसे पहला एफएम चैनल।
0: पर मस्त मुंबई में 9:30 पर सुन रहे हो अपनी आरजे मृन्मयी मनजा के साथ। ऐसे कौन सी खास चीज है जो आप भी संजो कर, सांप कर दिल के पास रखना चाहते हो, बस एक फ्रीज फ्रेम वाला मोमेंट। कि वीडियोस रील्स तो चलो बहुत सारी हैं, लेकिन कैमरा का सिर्फ एक वीडियो वाली चीज नहीं होती, उसमें एक फोटो वाली भी चीज होती है, इसलिए खींचो, आज तो खींची लो।

0: जिंदगी कितनी खूबसूरत है, इस खूबसूरत जिंदगी में अपना रंग मिलाइए और देखिए ये जिंदगी और भी हसीन है। 107.1 FM Rainbow, musically yours.
1: मुंबई सुन रहे हो म्यूजिकली योर्स। मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे मृन्मयी और सुभदा, बिल्कुल हम ठीक ही है।

में तो जो बप्पा दिखे हैं आसमान में, तो हर किसी ने अपनी फोटो खींची है। मतलब कैमरा दिवस क्या, फोन है तो बस ले लेना है, अपना एक सांप के रखना है अपनी मेमोरी के लिए, अपनी याद के लिए। बहुत ही सुंदर सा गणपति बप्पा का आगमन का वो बादल से बना हुआ प्यारा सा आकृति मैंने भी देखा। तो चले आगे बढ़ते हुए, ये गाना आ रहा है आपके पास।

रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड वैसे भी हम कायम कर रहे हैं. ज्योति यराजी के बारे में भी आपने सुना होगा, 12.78 सेकंड 100 मीटर के हर्डल्स में. तो

0: वैसे भी हाल ही में भारतीय हॉकी टीम ने भी क्या शानदार जो है उन्होंने जीत हासिल की थी, 7-1 के साथ उन्होंने पाकिस्तान को हराया था। कह रही थी ना खेलकूद में कितना कुछ हो रहा है, आप ध्यान नहीं दो ना तो आप ऐसे ही मिस कर जाओगे, इतना कुछ विशेष होते रहता है। स्विट्जरलैंड में हुए वर्ल्ड रोइंग कप में भी भारतीय जवानों ने लक्ष्य और उज्ज्वल कुमार सिंह ने इतिहास कर दिया था। उन्होंने 6:26 का समय निकालकर भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता था। तो बस वॉलीबॉल की भी बात करें तो वहाँ भी कमाल ही है, भारत की जो टीम है बहरीन को 3-1 से हरा कर ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता। तो खुशियों के साथ मनाते हुए जो समा है, इसीलिए तो मुंबई के मस्ताने सुबह सुबह अच्छी अच्छी खबरें, अच्छा लगता है ना। वैसे भी पूरा हफ्ता निकालना है, पानी की कमी तो है ही, बारिश को लेके बेचारा मुंबई कर ऐसे कुछ कुछ पॉजिटिव कुछ कुछ अच्छी चीज़ों के साथ अपना दिन बना ही लेता है। मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे मृणमयी मनजा और ये है 107.1 FM रेनबो।
1: कॉस्मोस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित
2: इंटरनेट बैंकिंग,
1: मोबाइल बैंकिंग,
2: व्हाट्सएप बैंकिंग,
1: ईकेवाईसी,
2: एनईएफटी, आरटीजीएस,
1: आईएमपीएस,
2: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
1: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

9:51 107.1 FM रेनबो मुंबई। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे मृन्मयी मनजा और सुबह 11 बजे तक रहने ही वाली हूं। लेकिन उससे पहले ये गाना जो सुन रहे थे बुलेया सुल्तान फिल्म का गाना है, पापॉन और साथ ही साथ अरशाद कामिल विशाल शेखर का म्यूजिक। हम तो हैं ही म्यूजिकली योर्स। सुबह सुबह मुंबई को मोटिवेशन की जरूरत, मंडे को तो होगी मंडे मोटिवेशन। बस वही अच्छी अच्छी बातें हम सारी कर रहे थे और एक अच्छी खबर आपको ये भी सुना देती हूँ। विज्ञान की जगत में यानी विज्ञान की दुनिया में भाई अपने इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने नए सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन को एक बहुत ही बड़ा और कड़ा सा टेस्ट उन्होंने पास किया। 175 टन की जो ताकत यानी कि थ्रस्ट जिसे हम कहते हैं उसको परखा गया और ये टेस्ट 100% सफल रहा। यानी कि सीधा मतलब क्या है पता है कि भारत अंतरिक्ष में और भी भारी भरकम सैटेलाइट्स और इंसानों को जो है मतलब भारी भरकम इंसान नहीं बोल रही लेकिन हाँ भेज सकते हैं हम स्पेस में। तो उसके लिए तैयारी जो है वो भी ग्राउंड में वो भी होनी चाहिए ना, वही वाली बात। और जो गोल्ड की बात कर रहे थे, ये जो ज्योति का मैंने आपको मैसेज बताया हमारी एथलीट जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता वो तो हमारे भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में ही था। मुझे सभी के मैसेजेस आ रहे हैं, हमारे श्रोता जैसे विजेंद्र वो भी उड़ीसा गए हुए थे हाल ही में और देवस नानो पूर्णिमा में क्या क्या होता है क्या नहीं होता वो सारी चीज़ें। नमस्ते भारत में आज अलग अलग त्यौहार हैं तो हमारी जो विविधता है उसके साथ साथ जो हमारी एकता है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे त्यौहार लेके मैं आई हूँ आपके लिए, तो कहीं नहीं है जाना, हमारे साथ जुड़े रहना है। नया वाला तो नहीं ला सकते लेकिन मेडल ला सकते हैं।

ये मेडल की बात हो रही है, स्वर्ण पदक की, गोल्ड फिल्म का ये गाना, दलेर मेहंदी, सचिन जिगर और जावेद अख्तर। सुन रहे हो 107.1 FM रेनबो, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे मृन्मयी मनाजा और आप सब हैं थोड़े से बदमाश। हमारे जितने भी पुराने श्रोता हैं वो लोग तो अपनी ही मस्ती में मुंबई के मस्ताने हुए हुए वैसे भी पूरे थीम में झूम ही रहे हो। जैसे कल्याण से सुहास ने फ़ोन किया था, वो कह रहे थे कि मैंने आपको देखा रास्ते में अभी, तो उड़ीसा की बात हो रही थी तो हम लोग भी वहीं गए थे, आपको आवाज़ भी हमने दी और आपने सुना भी नहीं। मैंने कहा है तो कहाँ कहाँ, मैं पूछती रही। फिर बोलते हैं नहीं वो ऐसे फ्लाइट जा रही थी तो हम नीचे से ऐसे कल्याण से आवाज़ दे रहे थे। वाह, मतलब मैं ही मिली हूँ ना सुबह सुबह बनाने के लिए।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस सम्मान को पाने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। समारोह की परेड में भारतीय नौसेना और थल सेना की टुकड़ियों ने भाग लिया। भारतीय नौसेना के बैंड ने भी प्रस्तुति की। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तरकश और INS इक्षक राजधानी विक्टोरिया में तैनात रहे, जिसने भारत और सेशेल्स की मजबूत मित्रता को दर्शाया। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशेल्स की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को भिवंडी की सत्र अदालत ने 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जांच एजेंसियों को संदेह है कि इस मामले के तार कई राज्यों में फैले परीक्षा माफिया से जुड़े हो सकते हैं। आरोपियों से पूछताछ कर नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने फीफा विश्व कप में नया रिकॉर्ड बनाया है। वे लगातार 7 मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज ग्रुप जे के अपने अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। मेसी ने 80वें मिनट में फ्री किक पर गोल किया। इसके साथ ही विश्व कप में उनके

गोलों की संख्या 19 हो गई। पुरुष क्रिकेट में आयरलैंड ने भारत को दूसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 1 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ आयरलैंड ने 2 मैचों की श्रृंखला 2-0 से अपने नाम कर ली। बेलफास्ट में पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 154 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 153 रन ही बना सकी। आयरलैंड ने जय मुनंद्रा को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। इसी के साथ समाचार समाप्त।

नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हेलो हेलो। सुन रहे हो आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल, सीधा सीधा प्रसारण आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर डीआरएम पर भी सुन सकते हो। साथ ही साथ न्यूज ऑन एआईआर ऐप तो है ही, जहां दुनिया के हर कोने से, जहां जहां बारिश हो रही है, यहाँ के महाराष्ट्र के हर कोने से भी आप मुझे मैसेज भेज ही रहे हो, फोन करके भी बता रहे हो कि भाई हमारे यहाँ तो बारिश हो गई, बस क्या बात है। तो नमस्ते भारत, भारत के हर एक कोने से जुड़े हुए हो हमारे साथ। और नमस्ते भारत में आज क्योंकि सोमवार है, आज हम क्या करने वाले हैं? थोड़ा सा हिंट दिया था मैंने आपको, आज प्रीत जहां की रीत सदा, यानी ये भारत की जो विविधता है उसमें जो एकता है, धर्म जाति त्योहार मेले रिवाज, अलग अलग तरह की अनूठी परंपराएं, सारी चीजों पे बात करेंगे भाई। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे मृन्मयी मनाजा।

0: नमस्ते भारत। ज्येष्ठ पूर्णिमा के साथ आज वट पूर्णिमा भी है। महाराष्ट्र और कई सारे राज्यों में ये मनाया जाता है, जहाँ ये वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पश्चिम तट की बात हो रही है, वहीं ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पूर्वी तट पर उड़ीसा में आज देवस नानक पूर्णिमा है, जिसके बारे में मैंने कहा था आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ एक और भी खास त्यौहार जैसे बैल के साथ मनाई जाती है। अलग अलग मतलब जाति प्रजाति सब जुड़े हुए होते हैं भारत में। आपको तो पता है हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है कि आपको क्या नहीं मिलेगा। तो ये जो चीज है ये भी बहुत खास थी। और कभी कभी ना त्योहार जैसे आपको एकदम अपने गांव ले जाते हैं, छोटी छोटी बातें याद आती है ना। जैसे वो मुझे कह रही थी, अभी बात हो रही थी हमारी, तो कहती हैं कि जैसे अब तो सुबह उठो तो काम करने जाओ, फिर काम करके फिर वापस घर पे आओ, और मतलब त्यौहार वगैरह कैसे गांव में रह जाते हैं ना। तो थोड़ा सा समय आप और हम खींच के लेके आते हैं अपने लिए, जहाँ थोड़ी बहुत बातें हम कर ले, है ना।
1: गली गली तेरी लाज जा।

जिंदगी कितनी खूबसूरत है, इस खूबसूरत जिंदगी में अपना रंग मिलाइए और देखिए ये जिंदगी और भी हसीन है। 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: एक बात तो तय है कि पूर्णिमा के अवसर पर अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के जश्न मनाए जाते हैं। जहाँ वट पूर्णिमा की बात होती है, यहाँ तो जैसे सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की मंगल कामना करते हुए बरगद के पेड़ के आसपास उनकी आयु के लिए और कुछ लोग कहते हैं कि 7 जन्मों तक के साथ के लिए इस तरह की पूजाएं करती हैं। सावित्री जैसे अपने पति को बचाने के लिए इसी भाव के साथ। लेकिन कहाँ, मैं दूसरी तरफ से आती हूँ, तो अलग अलग तरह की जो हमारी परंपराएं हैं हमें कितना कुछ सिखा जाती हैं और कितनी एक जैसी भी होती हैं, वही तो सबसे मज़ेदार वाली बात है। 10:15 हो रहे हैं इस वक्त। नमस्ते भारत, सुन रहे हो अपनी मृणमयी मनोजा के साथ।
1: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
2: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
1: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
2: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
0: जग घूम लेंगे लेकिन इंडिया जैसा कुछ नहीं मिलेगा।

10:20 हो रहे हैं। नमस्ते भारत, कैसे हो? सुबलक्ष्मी ने जैसे हमें भेजा है कि कार्यक्रम पसंद है, ऐसे ही घड़ी घड़ी जो अपडेट्स आप भेजते रहते हो, धारा विवरणी लाइव कमेंट्री बहुत अच्छी लगती है 8657661071 पर। और एक का हमारा प्यारा सा मैसेज है कि जानने की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि शादी नहीं हुई। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे उड़िया में एक कहावत है कि भागर ही नहीं तो कौन बर जात्री रह जाए, नहीं मतलब वर जात्री बारात जो बोलते हैं। तो कुछ चीज़ें आपके साथ हुई हो नहीं हुई हो, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। लेकिन बात ऐसी है कि देश हमारा इतना बड़ा है कि पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, सात जन्म भी निकल जाएंगे, पर पता नहीं चलेगा। ये सत्य है। अब क्या कर सकते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ नया जानने को मिलता है। अब बताओ, जैसे जब मुंबई पहले पहले मैं आई थी तो मैंने ये सुना था, तो मुझे मतलब बड़ा अजीब सा लगा था कि ये कैसा त्यौहार है, क्योंकि हमारा थोड़ा सा अलग होता है। सावित्री में फल खाए जाते हैं और फल के अलावा और कुछ नहीं खाती हैं महिलाएँ, और बात वही है कि उनकी तरह बनने का जो प्रयास है, उनकी जैसी गुणी, उनकी जैसी इंटेलिजेंट है ना, कि इतनी आप बुद्धिमान बुद्धिमती बन सकें कि आप इतने मुश्किल हालातों को भी संभाल सकें। तो हम लोग आइडलाइज करते हैं जो भी हमारे कथाओं में ऐसी हस्तियां होती हैं, उनकी तरह बनने के लिए, उनका आचरण अपने में लाने के लिए उस तरह किया जाता है। लड़कियाँ थोड़ा हमेशा एक्सीलेंस की तरफ बढ़ती हैं कि कुछ अच्छा किया जाए, है ना। और वहीं पति पतियों की बात करें, आए हाय कैमरा दिवस के बारे में बात कर ही रहते हैं ना। तो सोशल मीडिया पे जैसे एक पोस्ट था, एक मॉडल थी, उन्होंने डाला था कि हम मॉडल्स भी ना, हम भी अपने पतियों से नहीं बच सकती हैं। यानी कि ये देखिए 200 फोटोज जो मेरे पति ने खींची हैं, और मॉडल होने के बावजूद इतनी बुरी फोटोज, आए हाय। मतलब ये ना देश की नहीं, पूरे विदेश की भी बात है, पूरी दुनिया में ये चीज़ कॉमन है, इनसे ना हो पाएगा।

सबने लिख दिया कि हमारी पत्नी जा रही हैं ये त्योहार मनाने के लिए, सारे त्योहार बस औरतों पे ही छोड़ दो, खुद कब कुछ करोगे उनके लिए भी कुछ करो, ऐसे बाबुल का घर छोड़ के आके आपके लिए इतना कुछ कर रही हैं, कदर नहीं है बिल्कुल तो वही बात है। अभी दूसरे त्योहार की तरफ बढ़ते हैं, बंजारों की बात। वैसे वो बता रही थी कि उनके गाँव में और बैल को ना अलग अलग तरह से सजाया जाता है, जो गुलाल होता है जैसे होली का रंग नहीं होता, वो आप लगाते हैं, बहुत ही प्यारी सी खिचड़ी बनती है जिसका वो विवरण कर रही थी। ऐसे ही स्टूडियो में हमारी बात हो रही थी कि उसको वो खिलाते हैं, इतना स्वादिष्ट होता है। तो आज ही के पूर्णिमा के दिन देश के अलग अलग जगहों पर, ये कर्नाटक में इन्होंने कहा कि इनका बंजारों वाला जो है समुदाय वहाँ पर ये मनाते हैं। कितनी प्यारी प्यारी प्रथाएं हैं ना, अच्छी अच्छी चीजें जानने को मिलती है। पर एक खास बात है, खाना हर एक त्योहार से जुड़ा होता है, चाहे वो उपवासी क्यों ना हो।

0: बंजारी का टाइटल ट्रैक, किरदार और रजत शर्मा।
1: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
2: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
1: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

अभी जैसे बात कर रहे थे कि कई बार त्योहारों का बोझ औरतों पे आ जाता है, और आप लोग मुझे पूछ भी रहे थे कि क्या क्या किया, झूम के घूम के आ गए। तो ऐसा है, एक और त्योहार है जो मतलब अभी अभी खत्म हुआ है, लेकिन आपको कहाँ ही पता होगा, क्योंकि ओडिशा वैसे बेस्ट कैट सीक्रेट ऑफ इंडिया होता ही है, कि यानी कि ये जो रहस्य है ये छिपा हुआ रह जाता है। बेस्ट कैप्ट सीक्रेट क्या है? तो 3 दिन का त्योहार एक होता है जिसे रज कहते हैं, ये रजस्वला शब्द से आता है। औरतों को 3 दिन के लिए आप आराम देते हैं, पैर जमीन पे नहीं पड़ते, यानी कि हमारी जो माँ हैं, भू देवी हैं, मदर अर्थ, उन पे भी हम कोई कष्ट नहीं देना चाहते। तो वही वाली बात पे सारी लड़कियाँ रसोला श्रृंगार करती हैं, झूला झूलती हैं और सारे काम मर्द करते हैं 3 दिन तक, और खेती भी नहीं होती क्योंकि जमीन, हमारी माँ, हमारी मिट्टी, उनको भी हमें कष्ट नहीं देना है। ये पूरे साल में ये 3 दिन इस चीज़ को याद दिलाते हैं कि औरतें कितना कष्ट जो है पाती हैं पूरे वर्ष में। तो 3 दिन कम से कम जब मेंस्ट्रुएशन को सेलिब्रेट करते हुए, जश्न मनाते हुए, ये हमारा त्यौहार जिसके लिए इंटरनेशनल स्टेज पे भारत की इतनी वाहवाही होती है, और वहीं अलग अलग राज्यों को कभी कभी पता भी नहीं होता है ना।

बहुत सारे प्यार और भक्ति से भी कभी कभी बुखार हो जाता है। आपको पता है कि पहले ही पता हो कि बुखार होने वाला है, ऐसा कभी होता है? आजकल के जेंजी के जो एम्प्लॉयज हैं, कर्मचारी, वो तो अपने बॉस को सीधा सीधा लिख ही देते हैं कि कल मैं बीमार पड़ने वाला हूँ। सच बता देते हैं कि कॉन्सर्ट जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। और एक ज़माना था जब कितने सारे बहाने बनाए करते थे ना लोग कि घर में इनकी डेथ हो गई, ये गुजर गए, पता नहीं क्या क्या होता था। पर सच बोलने का भी ज़माना है। और मज़ेदार अनूठी परंपराओं की बात आए तो जिसका आपको बहुत बेसब्री से था इंतज़ार, वो मैं आपको बताती हूँ। हमें पंकज ने वैसे लिख के भेजा हुआ है कि उड़ीसा के 3 दिवसीय त्यौहार की जानकारी उनको बहुत अच्छी लगी और भूदेवी की बात के साथ साथ इंसानी

लाते देखो, इतना ज्यादा नहाओगे तो यही होगा आपके साथ। एक तो उसके बाद वो पहले हाथी बेश में आते हैं तो दर्शन सबका होता है, उसके बाद अणासर, ये कहा जाता है इसे, अणासर में वो चले जाते हैं। अणासर काल क्या होता है? 15 दिन का एक समय जिसमें वो एकांतवास में रहते हैं, दर्शन नहीं होता। यानी कि अभी अगर आप पूरी जाओगे जगन्नाथ दर्शन के लिए तो नहीं हो पाएगा, आपको पट्टचित्र ऐसे देखना पड़ेगा, बट जो असली दर्शन है वो नहीं हो पाता क्योंकि वो विश्राम में रहते हैं। उन्हें औषधियाँ दी जाती हैं क्योंकि उन्हें दिव्य ज्वर यानी कि बुखार हो जाता है। और देखो ना कहीं हमें छोटी छोटी हिंट जो हैं जिंदगी में मिलती रहती हैं। ठीक क्वारंटाइन की ही तरह 15 दिन तक अलग रहना है, औषधि लेनी है और एकदम से पूरी तरह ठीक होने के बाद ही बाहर आते हैं। फिर क्या होता है बताती हूँ ना।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

अरे रुको ना, अभी आप बोलोगे कि फोन नहीं उठा रही तो कैसे चलेगा, है ना? वैसे भी भर भर के जो प्यार भेजे हो ना, ये संभव ही नहीं है कि मैं उसको इस समय बोल भी पाऊँ। लेकिन अभी आप सभी के मैसेजेस मैंने पढ़े हैं, तो आप बिल्कुल भी उस चीज़ की चिंता ना करें, और जो कहानी शुरू की थी वो तो ख़त्म करने दो ना। तो आज दिवस नाना पूर्णिमा के दिन 15 दिन के क्वारंटाइन, कोविड याद आ गया ना, ठीक उसी तरह 15 दिन के अणसरों में जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, ये तीनों प्यारे प्यारे भाई बहन विश्राम में जाते हैं। और ठीक उसी तरह जैसे कि बेड रेस्ट के लिए बोलते हैं हमारी मम्मियों को, हमारी माओं को, डॉक्टर बोलते हैं तो वो सुनती नहीं है, कहीं ना कहीं कोने में ऊंचाई पर चढ़ के जाले साफ कर रही होंगी, मतलब समझ रहे हो, ये सबके साथ होता है। तो ठीक उसी तरह उन्हें याद दिलाना कि देखो भगवान की भी जब तबीयत खराब होती है तो वो भी याद दिलाते हैं कि कभी कभी विश्राम अत्यावश्यक होता है। खास तौर पे ये जो पूरे जोश के साथ हम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं पूरी दुनिया में, तो उसके बाद जब बीमार पड़ोगे, बुखार होगा, ज्वर होगा, तो उसके लिए अगर आप रेस्ट नहीं करोगे तो वो नवजौवन कैसे होगा। तो ये हमारा कान्हा जो है ना, प्यारा सा नटखट सा, बहुत ही अच्छे से सोने के बाद, आराम करने के बाद जब ठीक होके एकदम जोश के साथ वापस आते हैं तो उसे नवजौवन कहा जाता है, यानी कि एक नई जिंदगी। हम लोग क्या आज बोलते हैं कि वो ओल्ड मी, न्यू मी, मेकओवर हो गया, कुछ कुछ अच्छा एक नया सा लगता है ना, वो वाली प्यारी सी भावना हमें हमारी परंपराएं भी याद दिलाती हैं। कुछ अपने आप में बदलोगे तो जिंदगी थोड़ी सी अच्छी अच्छी लगने लगेगी, नया सा यौवन। हाँ, तो उसके बाद होता है नेत्रोत्सव, जिसमें उनकी आंखें आखिर में टचअप होता है, आखिर में रंगी जाती हैं, तो एक नया सा रूप लेकर दर्शन उसके बाद फिर से प्रारंभ होता है। और उसी के बाद होता है रथ यात्रा, यानी ये जो पूरी प्रक्रिया है, 15 दिन के लिए दर्शन बंद, उसके बाद वापस से नवजौवन, और फिर पुनः रथ यात्रा में जो जो उन्हें नहीं मिल पाते हैं सभी मिलते हैं। तो इसी तरह की परंपराओं के साथ आपके साथ जुड़ी हूँ, कभी कभी दूरियां भी जरूरी होती है।

तो दूरियां तो जरूरी है, यानी कि अब मेरे भी जाने का समय आ चुका है। मैं आपकी आरजे मृण्मयी मनेजर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई ट्रेडिंग करते हुए सुन रहे तो कोई खेत से जल्दी आकर, आप सभी के मैसेजेस मैंने पढ़े हैं। अब मैं कोशिश भी नहीं करूंगी लंबा मैराथन। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्कुराते रहना, खिलखिलाते रहना, इसी तरह FM रेनबो सुनते रहना।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: 11:18 हो चुके हैं और आइए इस घंटे के मुख्य समाचारों पर एक नजर डालें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशेल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन दिया गया है। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने उन्हें ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी ने सेशेल्स की सरकार और वहां की जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने ये सम्मान जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना कर रहे सभी देशों और पर्यावरण की रक्षा के लिए काम कर रहे लोगों को समर्पित किया। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को भिवंडी की सत्र अदालत ने 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जांच एजेंसियों का को संदेह है कि इस मामले के तार कई राज्यों में फैले परीक्षा माफिया से जुड़े हो सकते हैं। आरोपियों से पूछताछ कर नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है। मुख्य समाचारों में आगे, अर्जेंटीना के फुटबॉलर लायनल मेसी ने फीफा विश्व कप में नया रिकॉर्ड बनाया है। वे लगातार 7 मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज ग्रुप जे के अपने अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। मेसी ने 80वें मिनट में फ्री किक पर गोल किया। इसके साथ ही विश्व कप में उनके गोलों की संख्या 19 हो गई। मुख्य समाचारों के अंत में, पुरुष क्रिकेट में आयरलैंड ने भारत को दूसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 1 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ आयरलैंड ने 2 मैचों की श्रृंखला 2-0 से अपने नाम कर ली। बेलफास्ट में पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 154 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 153 रन ही बना सकी। आयरलैंड के जय मुंद्रा को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। इसी के साथ इस घंटे के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। ब्रेक फ्री के लिए बने रहें 107.1 FM रेनबो पर।

आप सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और FM पर 107.1 FM रेनबो, जो है आकाशवाणी मुंबई केंद्र से सिर्फ आप सभी के लिए। और आप हमें सुन सकते हैं 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी, और ये है मीडियम वेव पर। तो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 FM रेनबो। दोस्तों, हम सभी उम्र के अलग अलग पड़ावों से गुजरे हुए होते हैं और ऐसे ही बड़े होते हैं, और इसी वजह से हमें पता होता है कि किस उम्र में क्या चलता है मन मस्तिष्क में, जीवन में। पर इसके बावजूद दोस्तों, जब हम उस पोजीशन में होते हैं जबकि हमें दूसरे उम्र में छोटे व्यक्ति का मार्गदर्शन करना पड़ता है, तो हम या तो परवाह नहीं करते या तो हम सख्ती से पेश आते हैं। क्या आपको लगता है ये सही है? मुझे क्या लगता है बता आपको, मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और आप भी इस बात से इत्तफाक रखते होंगे मुझे पता है। पर हाँ, ये बात उतनी ही सच है कि ना चाहते हुए भी हम ऐसा ही कुछ कर जाते हैं, सख्ती से पेश आते हैं या तो परवाह नहीं करते। अब इस मेंटल मोड से हमें ब्रेक फ्री करना चाहिए, इसी पर आज बातें होंगी आप सभी के साथ ब्रेक फ्री में 107.1 FM रेनबो पर। मैं हूं वैशाली और आप सभी के साथ रहूंगी इस दोपहर के 2 बजे तक। हर तरह का पिंजरा, हर तरह की जो बाधा होती है, हर तरह का बंधन जो होता है, वो कभी सही होता है कभी नहीं। बस हमें पहचानना है वो कौन सा पिंजरा है जिसे तोड़कर हमें उड़ जाना है।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित, बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
4: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
3: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, ब्रेक फ्री चल रहा है। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस खामोश दूरी की जो अक्सर दो पीढ़ियों के बीच अनजाने में पनप जाती है। दोस्तों, हम सभी उम्र के अलग अलग पड़ावों से गुजरते हुए बड़े होते हैं और इसी वजह से हमें बखूबी पता होता है कि किस उम्र में, किस दौर में एक इंसान के मन में, मस्तिष्क में क्या चल रहा होता है। हम भी कभी उसी ना समझी उन्हीं सपनों और उसी उधेड़ बुन से गुजरते हैं जिसे आज हमारे घर के बच्चे या युवा गुजर रहे होते हैं। लेकिन अफसोस, जब हम उस पायदान पर पहुंचते हैं जहां हमें उम्र के छोटे किसी व्यक्ति का मार्गदर्शन करना होता है, उन्हें कुछ बताना होता है, उनकी कहानियां, उनकी बातें सुननी होती है, बस सुननी होती है, तो हम अपने ही बीते कल को भूल बैठते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं बाकी आप सभी से साझा करना। आप सभी के लिए एक कहानी भी ले आ रही हूँ जो आपके दिल को छुएगी। ऐसा कुछ ना कुछ आपके साथ, आपके किसी अपने के साथ कभी ना कभी हुआ ही होगा। वो बेजुबासी ख्वाहिशें, वो सपने, वो उलझने, राय क्या कहें इसके बारे में। बस थोड़ा सा इंतजार, फिर बताऊंगी आपको वो कहानी जिससे आप रिलेट कर पाएंगे। शायद सुनते रहें, बने रहें 107.1 FM रेनबो पर, म्यूजिकली योर्स।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 FM रेनबो। दोस्तों, आप सभी से मैंने कहा था कि आपको सुनाऊंगी मैं एक कहानी, और ये कहानी है बहुत ही छोटी सी। एक रात प्रीति घर से ये कहकर निकली कि अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर पढ़ाई के लिए जा रही है, पर वो एक ऐसी जगह पहुंची जहां उसे नहीं होना चाहिए था। 12वीं का साल, माँ ने सोचा कोई बात नहीं, दोस्तों के साथ पढ़ने लिखने में मजा आता है और पढ़ाई भी हो जाती है। प्रीति झूठ बोलकर जहां गई थी वहां अचानक पुलिस की रेड पड़ी। प्रीति और उसकी सहेली इतने ज्यादा डरे और सहमे हुए थे कि बस उनका होश ही ना था ठिकाने पर। उन्हें कोई इल्म ना था कि ये पार्टी किसी गलत किस्म की है। उन्हें डरा हुआ देख किसी ने उन्हें पानी दे दिया कि चलो ड्रिंक एक ले लो भाई, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। और टेंशन में उसकी सहेली ने पी भी लिया, पर प्रीति अब हर चीज़ को शक की निगाह से देख रही थी। उसकी सहेली ड्रिंक के बाद बहुत अजीब सा महसूस कर रही थी, अस्वस्थ महसूस कर रही थी। बस 17-18 साल की ये बच्चियां थीं। अपनी सहेली को देख प्रीति डर गई। उसने कांपते हाथों से फोन कॉल लगाया। आगे क्या हुआ आप जानना चाहेंगे, और जानने के लिए बने रहें 107.1 FM रेनबो पर।

आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, ब्रेक फ्री चल रहा है और आपको मैं सुना रही थी एक कहानी। कहानी थी प्रीति की, जो झूठ बोलकर पार्टी के लिए निकली थी और वहां पहुंच गई जहां उसे नहीं होना था। 12वीं का साल, माँ का भरोसा, इन सारी चीजों को ताक पर रख कर प्रीति चली गई थी। उसे लगा क्या होगा, बहुत ही हार्मलेस सी पार्टी होगी, थोड़ा सा नाच लेंगे, झूम लेंगे, खा पी लेंगे और घर आ जाएंगे। पर निकला कुछ और, उस जगह पुलिस की रेड पड़ी। वो उस तरह की पार्टी थी जहां उसे नहीं होना था, जहां किसी भी सोचने समझने वाले व्यक्ति को, समझदार इंसान को नहीं होना चाहिए था। प्रीति ने कांपते हाथों से कॉल लगाया और प्रीति के कॉल का जवाब मिला। हेलो बेटा, प्रीति का गला सूख रहा था। जैसे तैसे उसने कहा, माँ मैं तुमसे झूठ बोला था मैंने, माँ मैं कहीं बुरी फंसी हूं, क्या तुम मुझे लेने आओगी माँ। ये सुनते ही उसके माँ के पांव तले जमीन खिसक गई। उसने बिना वक्त गवाए अपनी पड़ोस की सहेली को साथ लिया और टैक्सी से उस जगह पहुंच गई जहां प्रीति थी। वहां प्रीति और उसकी सहेली एक गाड़ी के पीछे छुपकर बैठे थे। वो उन्हें

देखकर दौड़े उनकी तरफ। माँ ने प्रीति को गले लगाया और तुरंत उसकी सहेली को अस्पताल वो सभी ले गए और एडमिट कर दिया। और कुछ घंटों बाद बाकी सभी घर के लिए निकले, जब ये समझ में आया कि उसकी सहेली खतरे से अब बाहर है। बस हुआ कुछ नहीं था, इन बच्चियों को बिल्कुल भी ऐसे सब्सटेंसेस की आदत नहीं थी जो

खबर पूछने। उसने प्रीति की मां से उम्मीद जताई कि उसने प्रीति को अच्छी डांट जरूर लगाई होगी। इस बात पर प्रीति की मां मुस्काई और बोली, सुधा, वक्त आ गया है कि हम अपनी इस मानसिकता को बदलें। हमें सख्ती की जगह समझदारी का और परवाह ना करने की जगह एक प्यारे एहसास का पुल बनाना होगा, ताकि हमारे बच्चे हमसे दूर ना भागे। इसके बजाय जो अपनी हर उलझन हो वो हमसे खुलकर साझा कर सके। उनके लड़खड़ाते कदमों को थामना है और उन्हें डांटने के बजाय ये भरोसा दिलाना है कि हम तुम्हारे साथ हैं, वरना वो हमें तकलीफ में भी कभी कहीं पुकारेंगे नहीं, कभी आवाज नहीं देंगे। ऐसा कहा सुधा से प्रीति की माँ ने।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
2: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
3: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

ब्रेक फ्री चल रहा है 107.1 एफएम रेनबो पर। और दोस्तों अभी अभी मैंने आप सभी को बताई प्रीति की कहानी, किस तरह उसकी माँ ने अलग ही सा अपना, कहते हैं ना, अलग सी सूझबूझ दिखाई, अलग सी समझदारी दिखाई। क्या आपको पता है दोस्तों उस दिन क्या हुआ, जिस दिन प्रीति की माँ अपनी सहेली सुधा से बात कर रही थी, उस दिन प्रीति की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी उसकी आंखों से। ये क्यों आपको नहीं पता ना, क्योंकि माँ उसकी नहीं जानती थी कि प्रीति चुपके से सारी बातें सुन रही है। उस रात प्रीति ने अपनी माँ के गोद में सर रख कर माँ से बहुत सारी बातें की, ढेरों बातें की, और सबसे सुकून भरी नींद वो सोई।

0: कॉस्मोस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

आप सुन रहे हैं ब्रेक फ्री 107.1 एफएम रेनबो पर। दोस्तों आज ब्रेक फ्री में हमने बातें की उस एक मेंटल मोड से ब्रेक फ्री करने की, और ये मेंटल मोड वो होता है जहां पर हम या तो परवाह नहीं करते ज्यादा, या फिर हम बहुत ज्यादा सख्ती से पेश आते हैं अपने से छोटे जो यंग लोग होते हैं, युवा होते हैं, किशोर होते हैं, हमारे घर के बच्चे हो, हमारे आसपास के युवा हो, जिनके साथ हम काम करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, वो हमारे घर के बच्चे ही क्यों ना हो। तो ऐसी ही एक कहानी मैंने आपको सुनाई प्रीति की, और किस तरह उसकी माँ ने सूझबूझ से सारी चीजों को हैंडल किया। हालांकि वो बहुत रिस्की चीज थी, और कोई अगर और होता तो बहुत शायद डांट लगाता, मारपीट करता, टेंशन आ जाता है ना माता पिता को। तो इस तरह बिहेव कर सकती थी प्रीति की माँ, लेकिन उसने बहुत ज्यादा समझदारी से और धैर्य से काम लिया। दोस्तों इन्हीं अनकहे जज्बातों को टटोलने, अपनी कमियों को समझने और अपनों के और करीब आने के लिए इस खास मेंटल मोड जो मैंने अभी आपको बताया उससे ब्रेक फ्री करना जरूरी है। देखिए बात ऐसी होती है ना, यही सच्चा मार्गदर्शन होता है। जब आप किसी को समझे, उसकी बातें सुने, आप एक सेफ स्पेस क्रिएट करें जहां पर बातें हो सके, क्योंकि यही सच्चे मार्गदर्शन की शुरुआत भी है। आज से खुलकर जिए, खुलकर सोचिए और अपनी सोच का दायरा फ्लेक्सिबल रखिए, और खासकर उन लोगों के प्रति जो अभी अभी थोड़ा बहुत कुछ जीवन के बारे में सीख रहे हैं, उन्हें गलतियां करने दीजिए, बस पास कहीं पर रहिए, अवेलेबल रहिएगा, ताकि इमरजेंसी में आप भागकर दौड़कर उन्हें वहां से छुड़ा सके, गले लगा सके, क्योंकि इसी तरह वो सीखेंगे। हर कोई जो शिक्षा होती है, हर कोई पाठ जो होती है, वो ट्रेडिशनल तरीके से सीखी नहीं जा सकती, उसे कहीं ना कहीं गिरते पड़ते संभलते ही सीखना पड़ता है ना? क्या लगता है आपको, बताइए हमें। हमारे नंबर्स हैं व्हाट्सएप पर मैसेज करने के लिए 8657661071, और कॉल करने के लिए 4515-4132-4515-4133। आपको छोड़े जा रही हूँ कुछ गानों के साथ, और इसके बाद जो है ठीक 12 बजे आप सुन सकेंगे हिंदी में मुख्य समाचार, और उसके बाद होगा म्यूजिक कैफे शुरू। मैं हूँ वैशाली और आप सभी के साथ बनी हुई हूँ।

0: आकाशवाणी FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: आप सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और FM पर आकाशवाणी मुंबई केंद्र से 107.1 MHz पर FM Rainbow. और आप सभी हमें FM रेनबो का ये प्रसारण आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हैं. बने रहें, सुनते रहें 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स. दोस्तों, आज हम टाइम मशीन में बैठकर एक ऐसी संगीतमय यात्रा पर निकल रहे हैं जहां ड्रामा भी बड़ा है और म्यूजिक का ऑर्केस्ट्रेशन भी लार्जर देन लाइफ है. 60 के दशक की सादगी को पीछे छोड़ते हुए आज हम सीधे एंट्री मार रहे हैं रंग बिरंगे और धमाकेदार 70s में. याद कीजिए वो दौर जब आड़ी बर्मन यानी पंचम दा ने पाश्चात्य और भारतीय वाद्य यंत्रों का ऐसा कॉकटेल बनाया कि हर दिल झूम उठता. फिल्म यादों की बारात का आइकॉनिक गाना चुरा लिया, ये कौन भूल सकता है, और ये सभी का फेवरेट है. और ये एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण भी है उनके इस जबरदस्त कॉकटेल म्यूजिक का, जहां शुरुआत में बजती कांच की ग्लासों की आवाज और फिर एक साथ गूंजता हुआ वही गिटार और ड्रम्स का ऑर्केस्ट्रा पूरे गाने को एक कल्ट क्लासिक बना देता है. तो चलिए बिना देर किए लुत्फ उठाते हैं पंचम दा के इस ग्रैंड सॉन्ग का. म्यूजिक कैफे में आप है वैशाली के साथ 107.1 FM रेनबो पर.

107.1 FM रेनबो पर म्यूजिक कैफे चल रहा है और कई सारी बातें आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं संगीत के बारे में। संगीत में महफल होने वाला है ये, लेकिन उससे पहले एक और आपको धमाकेदार गाना सुनवा दूं जो कि टिपिकल सॉन्ग नहीं था, बहुत ही अलग ही थोड़ा सा अरेबिक स्टाइल का और ऐसा मिक्स गाना रहा ये, लेकिन ये भी गजब। अब हम बात कर रहे हैं 70s की और थोड़ा सा 80s की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। इस गाने के बाद एक क्विक कमर्शियल ब्रेक और फिर हम लौटेंगे लेकर के और गाने आप सभी के लिए।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
4: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू,
3: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
4: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
3: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

म्यूजिक कैफे चल रहा है 107.1 एफएम रेनबो पर और बातें हो रही हैं 80s की। अब शुरू करने वाले हम बातें, पहले बात हुई 70s की और भाई ऐसे लार्जर देन लाइफ फिल्में और इतना ज्यादा ऑर्केस्ट्रेशन वाले गाने हमारे दिल को आज भी सुहाने हैं लगते। दोस्तों 80s के दशक में कदम रखते हुए भाई वहां वो समय ऐसा था जहां डिस्को बीट्स ने एंट्री मारी, लेकिन मेलोड्रामा और भारी भरकम वायलिन का दबदबा कम नहीं हुआ। इस दौर में संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने ऑर्केस्ट्रेशन को एक अलग ही लेवल पर पहुंचाया। फिल्म कर्ज का वो धमाकेदार ट्रैक ओम शांति ओम याद है ना सभी को भाई साहब, उस गाने में जो ब्रास सेक्शंस हैं, ट्रम्पेट्स हैं और सैकड़ों वायलिन, ऐसा लगता है कि भाई एक साथ गरज रहे हैं। उन्हें सुनकर तो स्टेज पर खड़ा हीरो क्या, थिएटर में पॉपकॉर्न खाता दर्शक भी नाचने लगता था और आज भी हम नाचते हैं इस गाने पर, कहीं भी बजे सुने भाई पाव तो थिरकते ही हैं। ऐसा लगता था जैसे पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री एक ही छत के नीचे बैठकर जबरदस्त जुगलबंदी कर रही हो। आइए महसूस करते हैं 80s के उस जोशीले और मेलोड्रामेटिक म्यूजिक का जादू। और आपको गाना सुनवाऊं उससे पहले बस ये बताना चाहती हूँ कि 12:30 बजे आप सुनेंगे NCERT उमंग, ये प्रायोजित कार्यक्रम जो चलेगा आधे घंटे के लिए। फिलहाल बहरहाल आप सभी के लिए ये गाना फिल्म कर से ओम शांति ओम, वही मैं भी इंजॉय करती हूँ, आप भी इंजॉय कीजिए। 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो म्यूजिक कैफे चल रहा है। बातें हो रही है हर दशक के जबरदस्त गानों की और इन उन फिल्मों में मेलोड्रामा तो था ही था, लेकिन गानों में जो ऑर्केस्ट्रेशन था वो बड़ा ही कमाल का था। तो भाई 80s भी गजब के थे, अपने तरह के थे, और फिर आया वो सुनहरा दौर यानी हमारा प्यारा 90 का दशक, जहां प्यार में तड़प भी भव्य थी और उसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी ग्रैंड था। देखिए संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके जन्म का गाना तड़प तड़प के, कि अगर बात करें तो इसमें

विशाल दरबार साहब ने क्या सिम्फनी बनाई है, कोरस का भारी इस्तेमाल किया है और वाइब्रेंट ड्रम रोल्स दिए हैं और उसमें केके की आवाज का दर्द भाई उस गाने को अमर बना दिया इन चीजों ने। और गाना सुनकर आज भी ऐसा लगता है कि हीरो का दिल टूटने की खबर पाकर पूरी दुनिया ही इमोशनल होकर जोर जोर से तार खींच रही है। चलिए डूब जाते हैं इस 90s के दर्द भरे गाने में। और इरादा तो था कि आपको और गाने सुनवाए, जैसे भाई नई सदी यानी 2000s में हमने कदम रखा तो बॉलीवुड का मेलोड्रामा थोड़ा मॉडर्न और विजुअली भव्य हो गया। याद कीजिए शाहरुख खान की फिल्म जो थी ओम शांति ओम, उसका गाना दास्तान है ओम शांति ओम, एक हसीना थी एक दीवाना था का ही एक वर्जन। और विशाल शेखर ने इस गाने में वेस्टर्न सिंफनी ऑर्केस्ट्रा का इतना शानदार इस्तेमाल किया कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं आज भी सुनने पर, जब ड्रम्स की थाप और वायलिन की तीखी धुन एक साथ क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है तो ऐसा लगता है कि स्क्रीन पर सिर्फ पुनर्जन का ड्रामा नहीं चल रहा बल्कि साक्षात म्यूजिक का कोई महायुद्ध छिड़ गया हो। आइए इस शानदार ओपेरा स्टाइल गाने को हम याद करते हैं क्योंकि एक ही गाना आप सभी को सुनवाने की गुंजाइश है अभी, और इसलिए बस ये गाना आप सभी के लिए तड़प तड़प के, क्योंकि बड़े दिनों बाद आप सुन रहे होंगे मुझे यकीन है। सुनते रहें, बनते बने रहें 107.1 FM रेनबो पर, म्यूजिकली योर्स।

आप सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और 107.1 MHz पर आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो। अभी आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज जी ने। लिखते हैं,
2: पेड़ धरती के फेफड़े हैं, वे हवा को शुद्ध करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं।
3: धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद के मासिक संस्करण का बेसब्री से इंतजार करते हैं, ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है।
3: आप आगे लिखते हैं, कार्यक्रम में CIET NCERT के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर भारती कौशिक और विमलेश जी की बातचीत प्रशंसा योग्य लगी। कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा पर सुनाई गई विस्तार पूर्वक जानकारी बेहद पसंद आई। ये जानकारी रिकॉर्ड करके परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को भी हमने सुनवाई
2: जी।
3: इस कार्यक्रम की सभी ने तारीफ की। समावेशी शिक्षा पर विस्तार पूर्वक जानकारी सुनवाने के लिए आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, प्यारी बिटिया मीठी, अनाया गुर्जर और बेबी किरत ने। वो लिखते हैं,
3: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। आपका ये कार्यक्रम विविध जानकारी और मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भाषाई विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जून महीने के शुरुआती समय में उमंग प्रसारण का श्रोता संवाद कार्यक्रम एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया जिसने इस कार्यक्रम को अर्थपूर्ण बना दिया और एक प्रकार की नवीनता का संचार किया। सभी श्रोताओं को ये नवीन संस्करण अवश्य पसंद आया होगा।
3: आप आगे लिखते हैं, इस कार्यक्रम की परिचर्चा में आपने समावेशी शिक्षा जैसे अत्यंत प्रासंगिक असमकालीन विषय की ओर सभी श्रोता बंधुओं का ध्यान आकर्षित किया। प्रोफेसर भारती जी ने बड़ी सरलता से और विस्तार पूर्वक समावेशी शिक्षा का परिचय प्रस्तुत किया
2: जी।
3: अर्थ समझाया तथा समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा के बीच का अर्थ स्पष्ट किया। शिक्षा जगत में इन दिनों समावेशी शिक्षा की खूब चर्चा होती रहती है। उमंग कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में भी इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया। ये जानकर और कार्यक्रम सुनकर बहुत ही सकारात्मकता का अनुभव हुआ। आगे आप लिखते हैं,
2: श्रोता संवाद का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी के साथ जितने भी अंक प्रसारित किए गए हैं उन सभी ने श्रोताओं के मस्तिष्क पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। श्रोता संवाद हमारे और आपके बीच सक्रिय संवाद का एक विशेष सेतु है। आशा है कि उमंग प्रसारण में नवाचार, रचनात्मकता, आपसी संबंध और संवाद का ये क्रम चलता रहेगा।
3: आपको बहुत बहुत धन्यवाद योगेश ठाकुर जी, आपने बड़ी खूबसूरती से श्रोता संवाद कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपका धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है गोनियाना मंडी भटिंडा पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी का। लिखते हैं,
2: समावेशी शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। हमारी जानकारी भी बढ़ी और मैं ऐसे शिक्षाप्रद कार्यक्रम जरूर सुनता हूँ। आकाशवाणी भटिंडा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये प्रसारण हमारे लिए प्रस्तुत किया है।
3: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और आवासी परिवार के सभी सदस्य और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास। धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से बने रहिए

0: आपके प्रिय शैक्षिक कार्यक्रम उमंग के साथ। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है?
1: इसका उत्तर है साथियों, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ठंडी होती हैं, लेकिन जब उनके बीच नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो गर्मी पैदा होती है।
0: हमारा दूसरा प्रश्न था, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी?
1: इसका उत्तर है साथियों, भीमबेटका की गुफाओं की खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद विष्णु वाकणकर जी ने की थी, जिसके लिए उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
0: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, इन गुफाओं की बनावट ऐसी होती है कि गुफाओं की दीवारें और छत ध्वनि तरंगों को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करती हैं। गुफाएं गहरी हैं, इसलिए वहां बाहर का शोर भी लगभग नहीं के बराबर होता है, इसलिए वहां धीमी आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है।
0: और अब हमारा अगला प्रश्न, हमने आपसे पूछा था, बोर्रा गुफाओं की खोज किसने और कैसे की?
1: बोर्रा गुफाओं की खोज ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज द्वारा की गई थी।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों?
1: सिजू गुफाओं में एक पैसेज को टूथ पैसेज कहते हैं क्योंकि वहां चट्टानों की बनावट मानव दांतों की श्रृंखला से मिलती जुलती है।
0: तो साथियों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है?
0: 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। साथ ही साथ CIET NCERT को इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना ना भूलिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओं, हमारा पहला कार्यक्रम है, बुधनी गई है जंगल।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा पेड़ पौधों के संरक्षण और पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: बहुत थक गया आज तो। बुधनी, अरे ओ बुधनी,
1: आई रे आई। आ गया बुधवा, ले आया लकड़ी।
2: इतनी सी चुब्बा कहाँ रह गया?
1: अम्मा अम्मा अम्मा देख कितने जामुन लाया हूँ जंगल से। इतना बड़ा पेड़ ढूंढा है मैंने आज जामुन का। कल से रोज जाऊंगा बापू के साथ जंगल, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं अम्मा।
2: अरे चुप भी कर, क्या करूँ इतने सारे पेड़ों का। तेरा बापू तो एक भी पेड़ ना काट सकता। रोज यही जरी मरी सी सूखी टहनियां तोड़ लाता है बस।
0: फिर वही बात, अरे मैं क्यों काटूं पेड़ है? जब इतनी सारी लकड़ियों की टहनियां ऐसी मिल जाती है, काम तो चल जाता है ना।
2: काम चल जाता है, काम चल जाता है। हाँ नहीं तो, अरे ढेर लकड़ी लाओगे तो इतने सारे पैसे मिलेंगे बेचने से।
0: अच्छा,
2: कुछ कहना करिया, कुछ आड़े बखत के लिए, कुछ समझता तो है ना। हाँ
0: अरे भोली, जब तक जंगल है तब तक आड़ा बखत आएगा ही नहीं। ना लकड़ी की कमी, ना फल कंद की, बीमारी पड़ी तो जड़ी बूटी भी। रही गहना गरिया की बात, तो बुधनी ये जो तू जंगली फूल लगा लेती है ना कभी कभी, उसके सामने सच कहूं सारे गहना गरिया मात।
2: अब ना बहलती मैं तुम्हारी बातों से, कह देती हूँ हाँ, या तो कल एक बड़ा सा पेड़ काट कर लाओ, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखो।
0: अरे अरे रोने लगी। अरे सुन तो, अच्छा अच्छा सुन, आप चुप भी हो जा बुधनी, काट लाऊंगा एक पेड़ बड़ा सा। है तो ये पाप ही, हमारा ओझा भी यही कहता है कि पूरे विधि विधान के बाद ही काटो एक पेड़ और फिर लगाओ 10 पेड़, और पुरखों की भी यही रीत है। मगर तू कलह मत कर, मैं काटूंगा पेड़।
2: बापू दुख मत कर, कल हम पेड़ काटेंगे ही नहीं है? कोई बहाना बना देंगे ठीक।
0: हाँ यही ठीक रहेगा। अरे तू तो बड़ा सयाना है रे चुब्बा।
2: बातें कर रहे हो दोनों?
0: कुछ नहीं,
2: जरूर मुझे बुद्ध बनाने की बात होगी। हाँ।
0: नहीं नहीं नहीं,
2: अब तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ? अपने सामने कटवाऊंगी पेड़। अब तुम लोगों का कोई भरोसा है क्या?
0: नहीं नहीं नहीं, तू क्या करेगी जंगल में जा?

0: कर हम काट लाएंगे ना एक अच्छा सा पेड़।
1: हाँ अम्मा, वहाँ ऐसे ऐसे भयानक जानवर होते हैं, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं अम्मा।
2: अरे चुप, जैसे मैं तो कभी जंगल गई ही नहीं। मैंने तो सोच लिया है, मैं जंगल जाऊंगी ही। सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी करनी है, दिन भर का खाना बनाना है। अब चलो खाना खाकर जल्दी सो जाओ।

0: बच्चे, अरे क्या देखा तूने?
1: अम्मा अम्मा, मैंने देखा कि हम जंगल में पेड़ काट रहे हैं और अम्मा पेड़ रोने लगा, मुझे मत काटो मत मारो, मुझे दर्द होता है, मेरी लकड़ी ले लो, पत्ते ले लो, फूल ले लो, फल ले लो, पर मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारा मीत हूँ माँ। माँ उसने ये कहा, उसने कहा माँ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है अम्मा, और वो रोने लगा। अम्मा अम्मा जोर जोर से रोया, मगर हमने उसे काट ही दिया, काट ही दिया। वो चिल्लाया अम्मा, मैं भी चिल्लाया।
2: चुप्पा चुप्पा,
0: सजा सजा बेटे सजा, डर मत, अरे वो तो सपना था। सजा सोचा बेटा, मैं तेरे पास ही तो लेटी हुई हूँ, है सोचा बेटे, सोचा सोचा, शाबाश अच्छा बेटा है ना, चुप्पा तो सोएगा, सोचा सो गया। इसने तो मुझे डरा ही दिया, अरे कैसे कैसे सपने देखता है ये।
2: तो फिर कल पेड़ काटने नहीं जाना ना?
0: क्यों नहीं, बिल्कुल जाना है, जा जा सो जा। अरे वो तो सपना था, उससे क्या होता है, अरे सो जा, सुबह जल्दी उठना है।

0: चुब्बा, अरे ओ चुब्बा, अरे उठ बेटा, बुधवा उठो ना, भोर हो गई, मैं तैयारी करती हूँ चलने की।
1: अरे तो जाना ही पड़ेगा, तू मानेगी नहीं?
0: ना, मैं तो ना मानू। चल
1: चल, तेरे यही हट है तो चल चल चुब्बा।
0: अरे कुल्हाड़ी तो ले लो, पेड़ क्या हाथों से काटोगे?
1: अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, आदत नहीं है ना।
0: आदत नहीं है, ये नियत ना है वो। चल चुब्बा, वो रस्सी उठा, लट्ठों को बांधना भी तो होगा ना।
2: अच्छा अम्मा।
0: अरे अब चलो भी
1: चलो
2: चलो।

0: अरे मुंह क्यों लटका रखा है बाप बेटे ने? पेड़ की लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे तुम्हारे लिए भी तो चीजें आएंगी अच्छी अच्छी।
1: अम्मा मुझे नहीं चाहिए अच्छी चीजें। हाँ
2: मुझे भी नहीं।
0: ठीक है तुम लोग मत लेना, सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं अपने लिए लाऊंगी बस।
3: मैं तो गहना लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, गहना गरिया लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, बढ़िया खाना खाऊंगी, मैं तो साड़ी लूंगी।
0: अरे बाप रे, तेरी इस जंगल में शेर भी है क्या?
2: अरे शेर तो नहीं है, कोई बघेरा उघेरा होगा। अरे डर मत, ये कुल्हाड़ी है ना, वैसे भी इस तरफ आदमियों का आना जाना लगा रहता है, इससे जानवर इधर नहीं आते।
0: फिर भी
1: अम्मा तू भी चले वापस?
0: ना वापस तो फिर भी नहीं जाएंगे हम। हाँ
1: अम्मा क्या सोच रही है?
0: यही कि कौन सा पेड़ काटना ठीक रहेगा। क्यों बुधवा, ये जामुन कैसा रहेगा रे?
2: ये जामुन?
0: हाँ
2: चलो इसी को काट देते।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा इसे नहीं, ये तो फलों से लदा है।
2: हाँ।
1: हर साल फल देता है, इसे मत काटो।
0: हाँ ये बात तो ठीक है, जामुन कहाँ से खाऊंगी? तो फिर उस साल के पेड़ को काटते हैं चलो।
2: अरे रे क्या बात करती हो, वो तो अभी पूरा बढ़ा भी नहीं है, ये तो वैसे हुआ कि जैसे किसी को छुटपन में ही मरना पड़े।
0: अरे बात तो तुम्हारी सच है।
1: तो अम्मा ऐसा करते हैं, वो जो देवदार के बहुत सारे पेड़ है ना उनमें से एक को काट देते हैं।
0: अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। कितने सुंदर हैं ये पेड़, अरे उन्हें रहने दो। ये रोन का पेड़ कैसा रहेगा बुधवा?
2: ये
0: है भी काफी पुराना, फल भी नहीं है इस पर। तो
2: फूल तो हैं, फल भी आएंगे, अरे हजारों पक्षियों की भूख मिटाएंगे। नहीं नहीं नहीं नहीं ठीक नहीं रहेगा इसे काटना। चलो ठीक है काटना ही है तो ये नीम का पेड़ काट देते हैं।
0: अरे पागल हुआ है, ये नीम का पेड़ तो दवा दारू के काम आता है, कोई बीमारी नहीं जिसका इसके पास इलाज ना हो। हाँ
2: अच्छा तब तो अरार का पेड़ भी छोड़ना पड़ेगा है?
0: क्यों?
2: इसका भी नीम वाला हाल है,

0: बल्कि ये तो सुना है सबकी किस्मत भी जानता है, इसे कौन काटे।
1: चलो आगे देखते हैं, कोई ना कोई बेकार पेड़ तो मिल ही जाएगा, ऐसा क्या है।
2: हाँ हाँ चलो चलो, चलो। हाँ, आगे चलकर देखते हैं। अब चलो
3: देखो ये पेड़।
2: देख लो
1: अम्मा अम्मा वो देखो ओक का पेड़। और वहीं बबूल भी है। चलो अम्मा काटे
2: चलो, चलो। हाँ। इधर से निकल कर आओ।
1: अच्छा
3: ध्यान से बेटा।
1: आई क्या हुआ चुप्पा,
3: क्या हुआ
1: अम्मा अम्मा कांटा चुप गया। आई
2: अरे दिखा तो
1: अम्मा, लगता है पेड़ कह रहे हैं हमें मत काटो, हमें मत काटो। बापू इन्हें मत काटना, देखो ये रो रहे हैं।
0: ठीक है ठीक है, नहीं काटेंगे। हाँ।
1: देखा अम्मा कैसे लहलाने लगे, जान बचने से खुश हो रहे होंगे, है ना।
0: हाँ बेटा ये देखो, ये चीड़, देवदार, ओक, खजूर और ताड़।
2: हाँ।
0: ये तो है ही सदाबहार, इन्हें काटने से क्या फायदा।
4: अरे नुकसान भी क्या है।
0: बहुत नुकसान है, हमारे पुरखे कहते थे इन्हीं की बदौलत हवा पानी साफ रहता है, बरखा होती है, बाढ़ रुकती है। सोचो हमारी तरह सभी लोग चल दें पेड़ काटने तो कितना नुकसान हो जाए।
2: रहने दो अपनी बातें, कोई और पेड़ ढूंढो।
5: ये कौन सा पेड़ है, ना फूल ना फल।
0: क्या पता, मुझे सबके नाम थोड़ी मालूम है, मगर मैं तो इसे नहीं काटूंगा।
1: क्यों, देखो ना माँ, ये पेड़ हजारों लाखों कीड़ों का घर है, उन्हें दूध पिला रहा है।
5: और वो वाला, उसमें तो ना कीड़े दूध पी रहे हैं, ना फल है, ना फूल है, कुछ भी नहीं है उसमें, और ना ही उससे कोई लाभ है। उसे तो काटो कम से कम।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा, उसे छोड़ दो। देखो अम्मा, इस पेड़ की घनी पत्तियों में सैकड़ों पंछियों का घोंसला है।
0: हाँ।
1: पेड़ कटा तो वो सब बेघर हो जाएंगे। सोचो माँ, अगर हमारा कोई घर तोड़ दे तो हमें कैसा लगेगा।
0: हाँ बिल्कुल,
2: सचमुच इस पर तो कोयल भी रह रही है। बतवा रहने दे इसको भी।
0: अच्छा।
2: मुझे कोयल का गाना बहुत अच्छा लगता है, तू रहने दे इस पेड़ को तो।
0: ठीक है। अरे सुन, कोयल खुश होकर तुझे धन्यवाद दे रही है बुधनी।
1: अम्मा जिन जिन पेड़ों को तुमने बचा लिया वो सभी तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे।
5: मुझे बनाओ मत, मैंने अभी बदला नहीं है अपना इरादा। चलो ढूंढो काटने लायक पेड़। हाँ। इसमें हंसने की क्या बात है, चलो ढूंढो ना।
0: अरे अब कहाँ से ढूंढे, जंगल के सारे पेड़ों को तो तूने बख्श दिया। अब किसे काटे।
5: क्या सारे पेड़ों को बख्श दिया,
0: और क्या।
5: ना जी ना, अभी तो हजारों पेड़ होंगे इस जंगल में।
0: हाँ है तो सही, मगर वो सब भी इन्हीं के भाई बंद है, जो बात इनके साथ वही उनके साथ।
1: जीवा जीवा जी, अब तो पेड़ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा।
2: अरे चुप।
0: क्या हुआ।
5: हाँ अरे चुप्पा, हाँ पेड़ अब नहीं कटेगा। तो यही बात थी ना, तुम दोनों शाम को फुसफुसा कर यही बातें कर रहे थे ना, कि अम्मा को जंगल में बहला लेंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। है
0: तू समझ गई है।
1: तू भी तो मान गई ना कि कोई भी पेड़ कटने लायक नहीं है, अब तू ही बता किसे काटे।
0: बता?
5: रहने दे रहने दे, तुम दोनों बड़े सयाने हो,
4: मुझे हमेशा ऐसे ही बहला देते हो। मैं जिस भी पेड़ पर हाथ रखूंगी तुम उसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाओगे कि मुझे को दया आ जाएगी। हाय रे, मेरी इच्छाएं क्या कभी पूरी नहीं होंगी।
0: होंगी होंगी जरूर होंगी, मगर ऐसे नहीं।
2: फिर कैसे।
0: चल घर, चलते चलते बताता हूँ कि कैसे।
2: चल बता।
0: सुन, हम सब मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे अपने घर के आगे, फिर हमें फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, बुलबुलें आएंगी, कोयल गाएंगी, गीत गाएंगी, महुआ सींचेंगे, हम फिर मेले जाएंगे, खूब काम करेंगे, हम तीनों मिलजुल कर ताल बनाएंगे, मछली पालेंगे, मछली फल सब्जी महुआ कटहल बेचेंगे। हाँ, पैसे पाएंगे, बुधनी को देंगे, बुधनी खुश होगी, कलह नहीं करेगी।

0: बिल्कुल नहीं करेगी। झगड़ेगी भी नहीं। क्यों बुधनी, तब भी झगड़ेगी क्या?
1: क्यों अम्मा, तब भी झगड़ेगी?
0: बोल ना।
2: नहीं रे नहीं, मुझे क्या शौक है झगड़ने का। चल
0: सच्ची।

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम अर्जुन का निशाना।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।
2: बात बहुत पहले की है। हमारे देश में एक राजा थे पांडु। पांडु के 5 पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते हैं। युधिष्ठिर इनमें सब में बड़े थे। युधिष्ठिर से छोटे थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने पेड़ पर मिट्टी की एक चिड़िया टांग दी।

0: फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा,
1: उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है?
0: किसी ने कहा,
2: गुरुजी, मुझे राजकुमार, पेड़ और चिड़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है।
0: किसी ने कहा,
3: मुझे पेड़ और चिड़िया दिखाई दे रही है।
1: हाँ?
0: किसी ने कहा,
4: मुझे चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं।
0: अर्जुन की बारी आने पर द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा,
5: गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है।
0: अब द्रोणाचार्य ने बारी बारी से सभी को बाण चलाने का आदेश दिया। अर्जुन का निशाना तो ठीक आंख पर लगा, किंतु और भाइयों का निशाना चूक गया। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बताया,
1: क्या तुम लोग समझ गए कि अर्जुन का तीर निशाने पर क्यों लगा? जिसे केवल लक्ष्य दिखाई दे वही सफल होता है। तुम लोगों को लक्ष्य के साथ साथ और बहुत सी चीजें भी दिखाई दे रही थीं, इसलिए तुम्हारा ध्यान बट गया और निशाना ठीक नहीं बैठा। अर्जुन का ध्यान केवल चिड़िया की आंख पर था, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठा और बाण ठीक चिड़िया की आंख पर लगा।
6: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम अर्जुन का निशाना, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
6: नमस्कार।

आप सुन रहे थे न्यूज ऑन AIR ऐप और 107.1 MHz पर आकाशवाणी मुंबई केंद्र से ये प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। दोपहर के 1 बजे आप सुन सकेंगे छत्रपति संभाजी नगर से दोपहर के समाचार, जो चलेंगे 1:05 तक। आप अभी सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र से 107.1 FM रेनबो।

आप सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और FM पर 107.1 MHz पर आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल। FM रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 kHz के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हैं। वक्त हो चुका है फरमाइशों का, उन गानों का जो बसते हैं आपके दिल में। साथ होंगी बातें जो निकलती है आपके दिल से और पहुंचती है हमारे दिल तक। हिट एंड हॉट में 107.1 FM रेनबो पर। मेरी बात हुई आज हिट एंड हॉट को लेकर अयाज चौधरी इनसे, और इन्होंने कहा कि उन्हें प्रीति की कहानी वाकई बहुत अच्छी लगी। और ये बात इससे समझ में आती है कि बड़ों को जो है हमेशा छोटों को समझना चाहिए और एक दोस्त की तरह ट्रीट करना चाहिए। अब एक्चुअल में वो करना कैसे है, इसकी एक मिसाल भी उन्हें सुनने मिली प्रीति के कहानी के जरिए, तो बहुत अच्छा लगा। और भी कई सारी बातें इन्होंने साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुनना चाहते हैं मिलने की तुम कोशिश करना। ये गाना मैं सुनवाने वाली हूँ आपको सबसे पहले, और फिर बताना चाहूंगी कि हमारे कई सारे और श्रोताओं के भी मैसेजेस और कॉल्स मुझे आए हैं। मुझे मैसेज आया है राम प्रजापति जी का, ये सुनना चाहते हैं मेरा पिया घर आया। फिरोज जिगनपुरिया जी सुनना चाहते हैं जो गाना है वो है भीगी भीगी, और ये व्हाट्सएप म्यूजिक लवर्स ग्रुप को डेडिकेट करना करते हैं ये गाना। और इन्होंने और भी बातें लिखी हैं, इन्होंने कहा कि प्रीति की कहानी बहुत पसंद आई और पंचमदा के गीत सुनकर ऐसा लगता है कि किस तरह उन्होंने ये धुनें बनाई होंगी, तो बहुत पसंद आती है इन्हें इनकी धुनें, ये बात इन्होंने बताई। और फिर हमें मैसेज आया है संजय दर्शन जी का मालाड से, बाबा का दादर से, रजनीकांत पाटिल जी का वार्डवन से, अशोक पाटिल जी का वर्ली से, महोबिया परिवार का हमें मैसेज आया है, विजय महोबिया जी ने हमें मैसेज किया है खंडवा से, और फिर जो है मैसेज आया है शुभ लक्ष्मी मस्तकर जी का भी, और प्रदीप अनंत कृष्णन और डॉक्टर अंजू का भी अंधेरी से। और डॉक्टर अंजू और शुभ लक्ष्मी जी का यही कहना था कि भाई जो छोटे होते हैं या हमारे घर के बच्चे होते हैं उन्हें समझाना ही सबसे बेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा सख्ती या फिर परवाह ना करना ये बातें अच्छी बिल्कुल नहीं होती। हमारे और भी श्रोताओं के कॉल्स और मैसेजेस आए हैं, बाकियों की फरमाइशें थोड़ी देर बाद मैं प्ले करूंगी। अभी आप सभी के लिए मिलने की तुम कोशिश ना करना और मेरा पिया घर आया, ये दो गाने आप सभी के लिए प्ले होंगे। बने रहें, सुनते रहें 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

हिट एंड हॉट चल रहा है 107.1 एफएम रेनबो पर, और अभी मैं और दो तीन गाने प्ले करने वाली हूँ। सबसे पहले भीगी भीगी रातों में, ये गाना फिरोज सिंगन पोरिया इनकी फरमाइश, और उसके बाद प्रमोद चिंचोलकर इनका गाना। इन्होंने उमरी अकोला से हमें मैसेज किया है और गाने का नाम है सोमवार को हम मिले। तो ये दो गाने आप सुनेंगे बैक टू बैक, और हमें मैसेज किया है प्रणव शिंदे और विजेंद्र घाटोल इन्होंने भी, और संदीप मक्कड़ हमें लिख भेजते हैं बातें और अपनी फरमाइश जालंधर से, और ये प्रेमी आशिक आवारा ये इससे गाना सुनना चाहते हैं, फूल और कांटे फिल्म का ये गाना सुनना चाहते हैं। और आगे अगर मैं देखूं तो कई सारे मैसेजेस हैं। अब मैसेजेस में अंदर और क्या बातें हैं ये मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी थोड़ी देर बाद। फिलहाल बहरहाल आप सभी के लिए ये गाने प्ले हो रहे हैं, बने रहें, सुनते रहें 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

आप सुन रहे हैं हिट एंड हॉट 107.1 एफएम रेनबो पर। और ये जो आपने प्यार भरा गीत सुना, तो बस मुझे भी यहाँ पर एक मौका मिला कि मैं आप सभी को आज के शुभ दिवस की शुभकामनाएं दूं। आज वट पूर्णिमा है और आप सभी की शुभकामनाएं यहाँ पर एफएम रेनबो की टीम को मिल रही हैं और आप सभी को वट वृक्ष के आशीर्वाद से आपका दाम्पत्य जीवन अखंड सौभाग्य सुख प्रेम समृद्धि से भरा रहे। वट पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आप सभी श्रोताओं को। हाँ, ये व्रत जो है वैसे तो स्त्रियां रखती हैं, लेकिन ये सुखी और समृद्ध जो है दाम्पत्य जीवन के लिए है, तो एक सुख समृद्धि से भरे हुए जीवन के लिए आप सभी को टीम 107.1 एफएम रेनबो मुंबई की तरफ से शुभकामनाएं और बधाई। बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ, लेकिन उससे पहले बहुत सारी बातें आपसे साझा करनी है। अब देखिए, हमें प्रणव शिंदे जी ने बहुत सारी बातें लिखी हैं, इन्होंने किशोर दा के बारे में भी बहुत कुछ कहा है। पहले आपको गाना सुनवाती हूँ, फिर उनकी बात बताती हूँ, क्योंकि कुछ श्रोता होते हैं बहुत कम शब्दों में अपने दिल की बातें बताते हैं, और कुछ होते हैं वो काफ़ी कुछ अपना पूरा दिल यहाँ पर उंडेल देते हैं, तो इसलिए थोड़ा समय लगेगा कि हमारे जो दो श्रोता है उनके मैसेजेस आपके साथ साझा करने के लिए। आपको अभी मैं सुना रही हूँ प्रणव शिंदे, इनकी फरमाइश। इन्होंने एक्ट्रेस उपासना सिंह जी को दी है ढेरों शुभकामनाएं, आज उनका जन्मदिन है और उनकी फिल्मों के गानों की फरमाइश की है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उपासना सिंह जी को और प्रणव शिंदे जी की ये फरमाइश। हैप्पी बर्थडे उपासना जी। और ये रहा गाना फिल्म अम्बा से, जो ये सुनना चाहते हैं और डेडिकेट करते हैं।

0: आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो और ठीक 1:30 बजे आप सुन सकेंगे राष्ट्रीय मराठी समाचार न्यूज स्टूडियो से।
1: राष्ट्रीय बातमीपत्र
2: आकाशवाणी मुंबई। कौस्तुभ पटाईत राष्ट्रीय बातम्या देत आहे। ठळक बातम्या। सेशेल्सचा दौरा यशस्वीपणे पूर्ण करून प्रधानमंत्री मायदेशी रवाना।

सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और साथ ही साथ इन्होंने कई सारी बातें लिखी हैं। ये जो मैंने कहानी बताई थी प्रीति की, ये इन्होंने सेम यहाँ पर हमें भेजी है ये दिखाने के लिए कि बहुत अच्छी लगी उन्हें कहानी। लिखते हैं, आजकल के बच्चे घर से झूठ बोलकर पढ़ाई करने जाना, दोस्त के यहाँ जाना, एक्स्ट्रा पीरियड बताते हैं, ये सारी गलतियां हो जाती हैं। और माता पिता से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, लिखते हैं, और हर कदम पर अपनी समस्या में उन्हें साथ रखना चाहिए अपने, कि कोई भी समस्या आ जाए तो हर कदम पर उनका उनके साथ ही चलना चाहिए। लिखते हैं कि माता पिता को बच्चों को समझाना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए, और ये सारी चीज़ें इन्होंने साझा की है। धन्यवाद। और जो है प्रणव शिंदे भी बहुत सारी बातें हमें लिख कर भेजते हैं, हमेशा समय निकाल कर काफ़ी कुछ कहते हैं। तो ये इन्होंने यहाँ पर हमें लिख भेजा है कि बंधनों को तोड़कर अब उड़ना सीख लिया है, पिंजरा सोने का हो फिर भी छोड़ दिया है, अब न कोई बंदिशें हैं न कोई दीवारें हैं, हवाओं के रुख को हमने अपनी तरफ मोड़ लिया है, न शिकवा कोई न दिल में कोई मलाल रखना है, बस एक आजाद पंछी की तरह अपना ख्याल रखना है। बहुत जी लिए हम औरों के इशारों पर, बहुत जी लिए हम औरों के इशारों पर यहाँ, अब हर लम्हा बस खुद की मर्जी के नाम करना है। क्या बात है। और ब्रेकफी शो इन्हें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा, और किशोर दा के बारे में भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी है, बहुत ज़बरदस्त, सारे सिंगर्स को लेकर। अभी ये इतना लंबा है कि मैं अभी इसे पढ़ नहीं पाऊंगी, पर बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही सराहनीय है ये आपके सारे एफर्ट्स। हमें मैसेज है अमित भगत जी का मालेगांव से, हरजिन इंदर छिंदा जी जसवीर का पंजाब से नथाना गांव से, राजेंद्र परमार जी का भी हमें मैसेज आया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभिजीत गवाणकर जी भी हमें मैसेज भेजते हैं, अरुणा जी जो है खार से हमें मैसेज भेज रही हैं, और यहाँ पर जो है हमारे श्रोता हैं गुरमीत सिंह मीता, ये है साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से, सबरीना हमें मैसेज करती हैं, धन्यवाद। यहाँ पर मिंटू भी हमें मैसेज करते हैं, और भी हमारे श्रोता है जिन्होंने मैसेज किया है, तो उनके नाम बहुत जल्द मैं आप सभी के साथ साझा करूंगी, बने रहे सुनते रहे। पंकज मोहड़ जी का गाना काबिल हूँ, उसके बाद होगा तुमसे प्यारा कौन और प्रेमी आशिक आवारा, ये गाने लाइंड अप है आप सभी के लिए, सुनते रहें, बने रहें 107.1 FM Rainbow, म्यूजिकली योर्स।

0: जब सजते हैं सुरीले सांस तो खिल जाती है मन की कली,
1: यही डूबे दिल मेरे।
0: जगमगाता है ये दिल का शहर और धड़कनों की धुन पर थिरकते हैं अनजाने ख्वाब कई।
1: हाले दिल को सुकून चाहिए।
0: चल पड़ा है कारवां इन साजों का इस कदर, निखरने लगे हैं जिंदगी के रंग कई।
1: रंग दे
0: आओ रूबरू हो जाए हम इस हसीन दुनिया में, सिर्फ और सिर्फ 107.1 FM रेनबो पर, दिल से दिल तक।

आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, हिट एंड हॉट चल रहा है। मैं हूँ वैशाली और भाई अब समय नजदीक आ रहा है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले जो है दो गाने आप सभी के लिए प्ले होंगे। प्रेमी आशिक आवारा, जिसकी फरमाइश की थी संदीप मक्कड़ जी ने जालंधर से, और भाई शुभलक्ष्मी मस्तकर जी की फरमाइश हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, और ये गाने आप सभी के लिए। और धन्यवाद एक बार फिर कि आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे। कोशिश थी मेरी कि ज़्यादा से ज़्यादा फरमाइशें पूरी कर सकूं। बाकी हमारे जो श्रोता है जिन्होंने मैसेज किया पर हम उनके मैसेजेस पूरा पढ़ नहीं पाए, उनमें से हैं अभी अभी मैं बेनी का भी देख रही हूँ मैसेज, बेंजामिन बेनी भाईंदर से। फिर मैसेज आया है हमें यहाँ पर मंगेश जोशी जी का, रोहा रायगढ़ से, धन्यवाद आपका। मुंबई विक्रोली ईस्ट से प्रथमेश डोंगरे, इनका मैसेज भी हमें आया हुआ है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ संदीप कुमार जी का भी मैसेज आया है, साथ ही साथ लालगिरी गोस्वामी जी, इनका मैसेज भी है। आप सभी का धन्यवाद। आई होप कि उम्मीद यही कर सकती हूँ कि आप में से किसी का भी नाम मिस नहीं हुआ। आप सभी का धन्यवाद और बने रहें। अब मैं आप सभी से ले रही हूँ इजाजत इन दो गानों के बाद, है ना। तो अब मुलाकात होगी अगले महीने ही, और बारिश भरे इस मौसम में फिर से मिलेंगे 107.1 FM रेनबो पर। बने रहें, सुनते रहें म्यूजिकली योर्स।

0: वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायकर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान यूपीआई, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग, प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन्स से भी सम्मानित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मानसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
3: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।

0: याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जनविश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष श्री पी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के एम नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से एनसीपी नेता राजेंद्र हीरालाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से एआईएडीएमके विधायक एमआर विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले एआईएडीएमके विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
2: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें बीएलओज एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं वो सभी पे बीएलओज अपॉइंटेड हैं, तो सभी बीएलओज को उनके इनुमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
0: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित 2 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का आज वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कलकत्ता की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
3: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष

0: के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर अवामी लीग को देश के राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
1: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देवस्नान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा की उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नव जौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जी हाँ दोस्तों, अगर आपके साथ भी कुछ ठीक नहीं हो रहा है, कुछ परेशानियां हैं, तो दिल से एक मुस्कान के साथ अगर आप खुद से कहें ऑल इज़ वेल, तो आपका सफ़र थोड़ा आसान हो जाएगा। और साहब ऑल इज़ वेल तो होना ही है, क्योंकि बारिश अब स्टार्ट हो चुकी है, तो बारिश का मज़ा लीजिए आप लोग, लेकिन थोड़ा ध्यान में रखिए, क्योंकि बहुत हैवी बारिश की संभावना है इस वीक के एंड में। तो कुछ ज़रूरी काम हो तभी घर से निकलिए, नहीं तो घर पे ही रहिए। तो फिर आप सबको फिर से नमस्कार कर रहा हूँ मैं, और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1, और मैं हूँ आपका दोस्त आरजे रॉबिन। आपका और मेरा साथ रहेगा पूरा 3 घंटे। आपने मुझे पहले सुना होगा को होस्टिंग करते हुए, और आज ये मेरा पहला सोलो शो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला पड़ाव, जिसका नाम है लव इज़ ज़िंदगी। आज के लव इज़ ज़िंदगी में हम बात करेंगे उन छोटी छोटी खुशियों की, जो बिना किसी बड़े कारण के हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं। शायद ज़िंदगी की असली खूबसूरती इन्हीं पलों में छुपी है। तो अगले एक घंटे तक हम बात करेंगे ऐसी ही छोटी खुशियों की, और उनसे सुनेंगे कुछ जुड़े कुछ खूबसूरत गीत।

तो दोस्तों, कैसा लगा ये गाना आपको? और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे हमारे जो श्रोता हैं, विजेंद्र घटोल जी, उनको ये गाना काफ़ी अच्छा लगा। और प्रणव शिंदे जी बोल रहे हैं नमस्ते रॉबिन जी, आपको भी नमस्ते। देन सुनील स्वप्निल जोशी जी ने भी काफ़ी अच्छा चीज़ें लिखे हैं मेरे लिए। और देन राजेंद्र जोठानी, पंकज महोर, रुकी रुकी जो गाना मैंने चलाया था उनको काफ़ी अच्छा लगा। और देन अरविंद कुलकर्णी जी कह रहे हैं गुड इवनिंग, आपको भी गुड इवनिंग। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं, कारवां आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, लाइफ की भाग दौड़ में

बार हम अपने करीबी यारों से दोस्तों से दूर हो जाते हैं, लेकिन अचानक एक दिन उनका फोन आ जाए और पहली आवाज सुनाई दे, यार कैसे हो। बस इतना सुनते ही चेहरा अपने आप खिल जाता है ना। कुछ रिश्तों की खूबसूरती यही है कि समय बदल जाता है लेकिन अपनापन नहीं।

0: यार, मुझे कुछ जल्दी भेजना है। कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: दोस्तों, समय हो रहा है 5:30 और आप सुन रहे हैं FM रेनबो 107.1 और प्रोग्राम चल रहा है लव इज जिंदगी। कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते, वो हमें हमारी पुरानी यादों तक पहुंचाने वाले पुल होते हैं। एक धुन बजती है और हम अचानक किसी पुराने सफ़र, किसी खास मुलाकात या भूले बिसरी यादों में खो जाते हैं। तो आप भी अपनी आंखें बंद करिए और सोचिए कि आपके दिमाग में भी कुछ आ रहा है कि नहीं। तब तक हम ये गाना प्ले करते हैं।

दोस्तों, आप सबको तो याद तो होगा कि स्कूल की छुट्टी और वो बचपन की खुशियाँ, स्कूल का आखिरी घंटा और फिर दोस्तों के साथ घर की ओर दौड़। ना कोई टेंशन, ना कोई डेडलाइन, बस खेलना, हंसना और मस्ती। बचपन की खुशियाँ आज भी याद आते ही मुस्कान दे जाती है ना। वो जो मस्ती की पाठशाला आप सभी को याद तो होगी, तो चले चलते हैं उसी मस्ती की पाठशाला में।

दोस्तों, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे श्रोता ने मैसेज कर रहे हैं हमें और उनको सारे गाने काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। पंकज माहौर जी अमरावती से कह रहे हैं गुड इवनिंग, मैं भी आपको गुड इवनिंग बोलता हूँ। देन प्रणव शिंदे कह रहे हैं लवली सॉन्ग्स प्लेलिस्ट, थैंक यू। अजय साखरे इंदौर से कह रहे हैं नाइस सॉन्ग। देन रजनीकांत पाटिल वाड़वार से हैं और देन विजेंद्र घाटोल अकोला से, उन सबको ये गाने अच्छे लग रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि कभी ना अचानक मिली तारीफ कभी आपको मिली है क्या? कभी किसी ने आपसे कहा है कि आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं या आपकी मुस्कान बहुत प्यारी है? ऐसे छोटे छोटे शब्द दिन भर की थकान निकाल देते हैं। एक सच्ची तारीफ किसी का पूरा दिन खूबसूरत बना सकती है। आप भी किसी एक व्यक्ति की दिल से तारीफ जरूर कीजिए जब भी आपको मौका मिले, तो उसके चेहरे पर तो मुस्कान आएगी लेकिन आप भी बहुत अच्छा फील करेंगे।

दोस्तों एफएम रेनबो 107.1 सुन रहे हैं आप, और चलिए बात करते हैं कुछ ऐसी छोटी छोटी खुशियों की जो जिंदगी को खास बनाती है, जैसे सुबह की ताज़ी हवा, घर पहुंचते ही अपने लोगों की आवाज़, पुरानी तस्वीरें देखना, मनपसंद खाना मिल जाना, या फिर रेडियो पर अपना फेवरेट गाना सुनना। यही छोटी छोटी बातें जिंदगी को खास बनाती है, तो इसको एंजॉय करिए। और जब भी आपको आपका मन अगर उदास हो तो आप उस चीज़ के बारे में सोचिए जिससे आपको खुशी मिलती है, और उसे इग्नोर मत करिए।

तो दोस्तों, ऐसे ही हर पल आप उसको इग्नोर मत करिए, उसको एहसास करिए। खुशियां हमेशा बड़ी सफलताओं से नहीं मिलती, ये मिलती है दोस्तों की आवाज़ में, पुराने गीतों में, बचपन की यादों में और किसी के मुस्कान में। बस हमें उन्हें महसूस करना आना चाहिए। इन्हीं छोटी छोटी खुशियों के साथ कहिए जिंदगी लव यू। मैं हूं आपका दोस्त आरजे रॉबिन, सुनते रहिए FM Rainbow।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: दोस्तों समय हो रहा है 6:15 और आप सुन रहे हैं हमारा अगला पड़ाव, हमारा अगला कार्यक्रम जिसका नाम है अंदाज़े बयां। अल्फाज की खुशबू और एहसासों की हल्की सी बारिश लेकर हाजिर है आपका अपना सफ़र। यहाँ बातें सिर्फ कही नहीं जाती, महसूस भी की जाती हैं। तो आइए थोड़ी देर दुनिया की भाग दौड़ से दूर चलते हैं, जहाँ नगमे भी शायरी लगते हैं और खामोशी भी कुछ कह जाती है। मैं हूं आपका दोस्त रॉबिन और शुरू करते हैं अंदाज़े बयां।

0: जब सजते हैं सुरीले सांस तो खिल जाती है मन की कली,
1: यही डूबे दिल मेरे।
0: जगमगाता है ये दिल का शहर और धड़कनों की धुन पर थिरकते हैं अनजाने ख्वाब कई।
1: हाले दिल को सुकून चाहिए।
0: चल पड़ा है कारवां इन साजों का इस कदर, निखरने लगे हैं जिंदगी के रंग कई।
1: रंग दे तुम्हें गेरुआ।
0: आओ रूबरू हो जाए हम इस हसीन दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 107.1 FM रिंगबो पर, दिल से दिल तक।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
2: दोस्तों 6:30 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं अंदाजे में। कभी कभी मोहब्बत सिर्फ साथ रहने में नहीं होती, दूर रहकर भी किसी की खैरियत पूछने में होती है। कुछ लोग जिंदगी में भले पास ना हो, लेकिन उनकी फिक्र हमेशा दिल के करीब रहती है। इसी एहसास, इसी नर्म सी तड़प के साथ सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत नगमा।

दोस्तों, अंदाज़े बयां सुन रहे हैं आप और बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कुछ बातें धीरे से कही जाएं तो दिल पर ज़्यादा असर छोड़ जाती है। मोहब्बत हमेशा शोर में नहीं होता, कभी वो हल्के हल्के लफ्ज़ों में भी महसूस होती है, जैसे कोई दिल के बहुत करीब आकर धीरे से आपका नाम ले।

दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ने मैसेज किया है हमें, तो मैं कुछ पढ़ लेता हूँ मैसेज। प्रणव जी कह रहे हैं कि उनको दिल को सुकून देने वाले बेहद खूबसूरत गीतें सुन रहे हैं, उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो थैंक यू। और फिरोज़ सिगनपुरिया जी कह रहे हैं कि उन्हें भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं सारे गाने। दत्ता केदार पंढरपुर से भी बहुत कह रहे हैं कि बहुत अच्छे गाने बज रहे हैं। श्रीधरन जी भी को भी काफ़ी गाने अच्छे लग रहे हैं। एंड संजय दर्शन जी गुड इवनिंग बोल रहे हैं। जी सर, गुड इवनिंग। और भी लोग बहुत सारे भेज रहे हैं मैसेज, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी किसी एक इंसान की मौजूदगी ज़िंदगी की सारी थकान कम कर देती है, फिर वजह छोटी सी ही क्यों ना हो। उनका साथ, उनकी आवाज़ या बस उनकी एक मुस्कान, दिल फिर से जीना सीख जाता है।

दोस्तों, अब वक्त हो चला है अंदाज़े बयां को रुखसत करने का। ठीक 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार मराठी में, और हम आपसे मिलेंगे 7:10 पर आपके चहेते शो जिसका नाम है हम तुम। तो बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM रेनबो 107.1। मैं हूँ RJ रॉबिन।

0: 7.1 megahertz, musically yours.
1: दोस्तों वेलकम बैक, और ये है हमारा आखिरी पड़ाव आज का। एक घंटे हम खूब मस्ती वाले गाने चलाने वाले हैं आज, क्योंकि आज का हमारा थीम है डांस एंड मस्ती। तो बताइए, कौन सा बॉलीवुड गाना सुनते ही आपका दिल कहता है बस अब डांस होना चाहिए? तो भेजिए अपने गाने की फरमाइश और बनाइए इस रिक्वेस्ट आवर को और भी शानदार। तो चलिए शुरू करते हैं इन डिस्को भरे दो गानों के साथ बैक टू बैक।

तो दोस्तों मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग भेज रहे हैं मैसेज, गाने भेज रहे हैं, तो लेकिन आप ट्राई करिए कि क्योंकि आज का थीम हमारा है मस्ती भरे डांस वाले गाने, तो आप ट्राई करिए कि वैसे गाने भेजिए। तो मैं देख रहा हूँ बहुत लोग गाने भेज रहे हैं, थोड़े वो स्लो गाने हैं, सैड गाने हैं, वो नहीं भेजना है आपको, भेजना है जिसमें आपको मन करे कि डांस करने का मन करे, जैसे मैं अभी मेरा मन कर रहा था कि मैं डांस करूँ अभी जो गाने मैंने बजाए, तो ऐसे गाने भेजिए। तो चलिए अब अगला गाना प्ले करते हैं, प्रणव शिंदे जी का चॉइस का गाना है

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
2: तो दोस्तों मजा आ रहा है ना, आप लोग डांस कर रहे हैं कि नहीं? तो ये छम्मक छल्लो जो गाना हमने प्ले किया था, इसकी

नुमाइश की थी चेतन कुमार और आरती जो है मुंबई से। तो चलिए अब अगला गाना पेश करते हैं आपको, इट्स मैजिक, और ये रिक्वेस्ट की है अनूप मुंबई से।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
2: तो दोस्तों, इतने सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से गाने बजाऊं और कौन से नहीं। तो अभी एक काम करते हैं, अभी जो गाना बजाया था जस्ट चिल, उसकी रिक्वेस्ट की थी संजय दर्शन जी ने, और अभी नेक्स्ट गाना बजाते हैं।

दोस्तों, जब बात होती है डिस्को की, मतलब हमारा थीम डिस्को का है, तो ये गाना ना बजे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आ रहा है अगला गाना, आई एम ए डिस्को डांसर, और इसकी चॉइस की है हीरामणि वर्मा जी ने, और उसके बाद कोई लड़की है, ये गाना विट्ठल जी के चॉइस में ये गाना है। तो अगर इसके बाद अगर समय बचा तो और हम गाना प्ले करेंगे, और नहीं तो फिर हमारा जाने का समय हो जाएगा। तो आपसे फिर दोबारा मिलूँगा। बहुत अच्छा लगा आज आप सबसे जुड़ के, और आपके बहुत सारे मैसेज एक बार देख लेते हैं, बहुत लोगों ने भेजा है। मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, सॉरी मैं अपना ये गाना प्ले नहीं कर पाया क्योंकि समय थोड़ा कम है। देन दिग्दर्शन और कविता।

जी ने भी किया मैसेज, वैद्य ही ने किया है, उनको बहुत सूदिंग लगा जो मैंने चलाया गाने। देन शंकराचार्य तेलंगाना से गुड इवनिंग बोल रहे हैं। देन बेंजामिन का मैं नाम भूल गया था, मैंने आपका नाम ले रहा हूँ। तो थैंक यू, आप भी जुड़े हमारे साथ। और रजनीकांत पाटिल, द दत्ता, केदार पंडरपुर, मीना जी, रघुनाथ, प्रदीप, पंकज महोड़, संजय दर्शन, शुभदा, चलिए और टाइम वेस्ट नहीं करते और गाना स्टार्ट करते हैं। और आप भी ये गाना सुनिए और डिस्को डांसर की तरह डांस करिए।

तो दोस्तों इसी गाने के साथ समय हो गया है मेरा जाने का, और आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। और बहुत अच्छा लगा मुझे आप सबसे जुड़ के, आपके फरमाइशें आपसे बात करके। तो आप अपना बहुत ख्याल रखिए और जल्द ही दोबारा मिलेंगे। टेक केयर एंड गुड बाय।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि

0: पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। यह बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास, पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकी के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हों। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: एप्लीकेशंस लॉन्च इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
2: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर।

0: कैंसर हेल्थ केयर।
1: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है, जो पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से शून्य उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारी संवाददाता सौम्य शरण की रिपोर्ट।
2: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
3: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
2: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से 2-पहिया, 3-पहिया, 4-पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है, जिनमें दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध किया है और ये बातचीत दोहा में होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1

0: 1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक घटकर 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक कम होकर 23,946 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर 94.54 रुपए पर बंद हुआ।
0: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2 बजे जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। अमेरिका के फुलटन में किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उपविजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सू लियांग से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में कल तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी तेज बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mushtaba with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu confers gallantry awards at defense investiture ceremony in Rashtrapati Bhavan. Prime Minister Narendra Modi says 50-year-old partnership with Seychelles will now advance through innovation, sustainability and shared prosperity. Returns home after successful visit to island nation. Cabinet approves additional investment of 30,000 crore rupees in National Investment and Infrastructure Fund to accelerate infrastructure investment. West Bengal Assembly passes Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill to curb anti-social activities. IMD issues orange alert for very heavy rainfall in parts of northeast, sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Goa, Maharashtra, Karnataka and Kerala tomorrow. And Indian women's cricket team earns one of the first berths for 2028 Olympics. And now the news in detail. President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the Phase 2 of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other Union Ministers and senior officials of Armed Forces, were also present on the occasion. A report.
3: The President conferred 7 Sarvottam Yudh Seva Medals, 30 Param Vishisht Seva Medals, 12 Uttam Yudh Seva Medals and 56 Ati Vishisht Seva Medals at the ceremony. Some recipients of the Ati Vishisht Seva Medal included Air Marshal Tarun Chaudhary, Lieutenant General Neeraj Varshney and Vice Admiral Anand Vai Sardesai. Recipients of the Sarvottam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Pratik Sharma, Air Marshal Nagesh Kapoor, and Lieutenant General Rajiv Ghai. Among those honored with the Param Vishisht Seva Medal were Vice Admiral Sanjay Vatsayan, Lieutenant General Manjinder Singh, and Air Marshal Ashutosh Dixit. Recipients of the Uttam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Dhiraj Seth, Air Marshal Manish Khanna, and Vice Admiral Tarun Sopti. The medals were awarded to personnel for distinguished service of an exceptional order with Soumya Sharan, Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की आज कड़ी निंदा की। इन हमलों में महिलाओं और बच्चे समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये खुली आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारतीय सेना ने मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की और वहां शिविर स्थापित किए। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन

फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री काजेम गरीब आबादी ने कहा कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने आज पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में अपने महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी।
1: खूबसूरत लफ्ज मेरे जहन में महफूज हैं, खूबसूरत लफ्ज मेरे जहन में महफूज हैं, मैं करूं फिक्रे गजल तो काफिया हो जाएगा। एक बार फिर से आदाब कबूल कीजिए हिना मौज का। प्रोग्राम रंगे महफिल के साथ हाजिर खिदमत हूं आकाशवाणी FM रेनबो पर। खूबसूरत कहानियों का ताना बाना या फिर एहसास जज्बात का कोई भी पल या लम्हा जब कैद होता है गज़ल के दायरे में, आता है पैराए में मौसिकी के, तो वो इतना खूबसूरत और इतना अज़ीज़ हो जाता है कि हमारी ज़िंदगी का अक्स उसमें झलकना एक लाजमी सी बात होती है। लेकिन दोस्तों, आपका पसंदीदा प्रोग्राम रंगे महफिल, जिसको लेकर आज आपकी मेज़बान हिना मौज हाजिर है, इसमें आज बात करते हैं गज़ल में सिमटे उस जज्बे की जो आँखों से आया हो तो आंसू की शक्ल इख्तियार कर लेता है, सोच से महसूस हो तो इंसान गुमसुम रहने लगता है, और अगर लफ्ज़ों में बयान हो तो गज़ल बन जाया करता है, और वो एहसास है कौन सा, ज़रा सोचिए और बताइए। वो एहसास है दर्द का, जिसकी शिद्दत से दोचार होता है इंसान जब, तो दिल से निकलती है एक आह जो पत्थर को भी पिघलाने की क़ुव्वत रखती है। ऐसे में जब कहानियाँ अलट पलट करके वर्क गिरदानी की जाती है तो उन कहानियों में से जुज़ निकलता है मोहब्बत का, और वो जुज़ जो दिल पर सीधा असर करने की ताकत रखता है। ऐसे ही एहसास जज्बात को शायर जब लफ्ज़ों में पिरोता है तो गज़ल की शक्ल दे देता है।

ये बिल्कुल सही बात है। वक्त गुजरने के बाद जब हम पलट कर देखते हैं तो हमें वो ज़माने, वो लम्हात, वो एहसास और उनसे जुड़ी हर कहानी याद आने लगती है। यादें एक ऐसा सरमाया और ऐसा खूबसूरत एहसास हैं जो हमें वक्त दर वक्त अपने साथ लेकर उड़ने लगती हैं। ऐसा लगता है कि हम ज़मीन पर नहीं, आसमान पर हैं और बहुत सारी चीज़ों के बीच जो हमारी ज़िंदगी में गुज़र चुकी हैं लेकिन फिर हम उन्हें दोबारा जी रहे हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ यादें ही कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों, गज़ल की अगर बात की जाए तो गज़ल में सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि ये एक शायरी की विदा है, बल्कि ये एहसास और जज्बात का एक आईना है जिसमें मोहब्बत, जुदाई, इंतज़ार, तन्हाई, उम्मीद और ज़िंदगी के ऐसे ही अनगिनत रंग झलकते हैं। इसमें सबसे गहरा रंग है दर्द का, जिस पर आज हम बात कर रहे हैं। गज़ल में दर्द हमेशा आंसुओं का नाम नहीं होता। कभी ये बिछड़ने का दर्द होता है, कभी अधूरी मोहब्बत का, कभी अपने ही लोगों से मिली बेरुखी का, तो कभी ज़िंदगी में गुज़रती हुई मुश्किलात का जिनसे हम रोज़ रोज़ गुज़रते हैं और जिन्हें हम सर करते हैं। ऐसी ही मुश्किलों के साथ गुज़रते हुए लम्हात हमें बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं। लेकिन क्या करें, जो दिल है वो उस वक्त बहुत बेचैन होता है और उसे समझ नहीं आता कि किस तरह रिएक्ट करे वो। और उस वक्त कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती ज़िंदगी में जो आपका दिल बहला दे, और बहलाने के लिए जो भी चीज़ मयसर होती है वो उस वक्त आपको चाहिए ही नहीं होती है। और ये एहसास, इस कैफियत से मेरे ख़्याल से कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ना गुज़रा हो या ना गुज़रे, क्योंकि ये सारी कैफियत एक इंसानी ज़िंदगी का ही सरमाया है जिनको लेकर हम चलते भी हैं, बढ़ते भी हैं और इनको साथ लिए बगैर बहुत सारी चीज़ें अधूरी भी रह जाती हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव ना आए, खुशी और गम ना आए, तो बहुत सारी चीज़ों को समझना जानना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक आम इंसान की ज़बान में कहा जाए तो ये एहसास और जज्बात आप आम तौर पर बयान नहीं कर पाते हैं, सही से आप दूसरे पर अपनी कैफियत को वाज़ी नहीं कर पाते हैं। लेकिन यही काम एक शायर लफ्ज़ों के पैराए में खूबसूरती से कर गुज़रता है, और एक गज़ल की शक्ल जब ये एहसास इख्तियार करते हैं तो हमें अपने से मालूम होते हैं, हमें बहुत अजीज़ हो जाते हैं।

बिल्कुल सही बात है। जब इंसान की ज़िंदगी में दर्द का बसेरा होता है, उस वक्त ये एहसास बहुत गहरा होता है और इस एहसास के आगे कुछ नहीं टिक पाता। जब दर्द अल्फाज का लिबास पहनता है दोस्तों, तो दिलों तक पहुंच जाता है, मगर दिलों का ये दर्द मायूसी नहीं सिखाता। ये इंसान को अपनी भावनाओं से, अपने एहसास और जज्बात से और इन जज्बों से रूबरू करवाता है जो आपके अंदर पैवस्त होते हैं। और गज़ल हमें बताती है कि दर्द भी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही तो है, और हर दर्द के पीछे कोई न कोई कहानी छुपी होती है। यही वजह है कि जब हम किसी गज़ल को सुनते हैं तो कई बार लगता है कि जैसे शायर ने हमारे ही दिल की बात कह दी हो, और ऐसे एहसास बहुत कमी से हमें महसूस होते हैं। ज़िंदगी के बहुत सारे पड़ाव हमारी ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन गज़ल जिन चीज़ों को अपने अंदर समोती है, बहुत ताकत के साथ पेश करती है, और वही एहसास व जज्बात आम और ख़ास हर इंसान की के जहन में, दिल में बस जाते हैं। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हम कहते हुए, बोलते हुए गुज़रते हैं, लेकिन जो ताकत एक शायर के कलम में होती है, वो ताकत आम इंसान नहीं रखता अपने अंदर। यही वजह है कि शायर के कलम से निकले लफ्ज़ या उसके मुंह से कही हुई गज़ल जो असर अंदाज होती है, वो एक आम इंसान की कैफियत दूसरे तक पहुंच के असर नहीं पहुंचाती। इसीलिए शायर का मकाम बहुत ऊंचा है। वो लफ्ज़ों को इतना खूबसूरत और इतना आसान कुन बना देता है कि हर इंसान को वो अपने से लगते हैं।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किट

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

11:29 सुन रहे हैं आप रंगे महफिल प्रोग्राम हिना मौज के साथ। बात चल रही है गजल में दर्द की। दर्द एक ऐसा एहसास है जिसके बगैर गजल अधूरी है। खास तौर पे गजल में मोहब्बत के साथ ये जज्बा बेइंतहा देखने को मिलता है। हर लफ्ज हर शेर इस जज्बे से होकर गुजरता है। गजल दिलों से जब होकर गुजरती है यही वजह बनती है मुन सारे एहसास जज्बात की जो दिल पर आया होते हैं बयां होते हैं। और शायद गजल सदियों से दिलों पर राज भी इसी वजह से कर रही है क्योंकि इसके अंदर से जो भी जज्बा उभरता है वो हर किसी के दिल तक पहुंचता है। दर्द की अगर बात करें तो दर्द अगर अल्फाज में ढल जाए तो वो शिकायत नहीं एक खूबसूरत एहसास में तब्दील हो जाता है जो बहुत ही ख़ास है। कहते हैं दर्द जब दिल में ठहर जाता है तो गजल बनकर जुबां पर उतर आता है। जो बात आंसू नहीं कह पाते वही बात अक्सर शेर कह जाता है। बहुत सारी ज़िंदगी में इस शेर को पढ़कर मुझे एक एहसास एक ख्याल जहन में आया कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो माथे पर पड़ी हुई सिलवटों को समझ नहीं पाते। उनको लफ्ज़ों की ज़रूरत होती है किसी भी एहसास को समझने के लिए। उनके लिए शेर व शायरी एक बहुत बड़ा तोहफा है जिसके ज़रिए वो हर एहसास हर जज्बे को समझने का एक तरीक़ा आज़मा लेते हैं क्योंकि उनको किसी भी इंसान की खामोशी पढ़नी नहीं आती। उसके माथे पर पड़ी हुई सिलवटें उनके आँखों से बहते हुए आंसू बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान खामोशी से समझता है। उनको समझने के लिए जब एक इंसान को अल्फाज की ज़रूरत पड़ने लगे तो उसके लिए गज़ल सबसे बड़ा ज़रिया है जो उसको ये सारे एहसास जज्बात समझाने का जज्बा रखता है पावर रखता है। कहते हैं कोई हसी मंजर आंखों से जब ओझल हो जाएगा मुझको पागल कहने वाला खुद ही पागल हो जाएगा। पलकों पे उसकी जले बुझेंगे जुगनू जब मेरी यादों के कमरे में होंगी बरसातें घर जंगल हो जाएगा। जिस दिन उसकी जुल्फें उसके शानों पर खुल जाएंगी उस दिन शर्म से पानी पानी खुद बादल हो जाएगा। जब भी वो पाकीज़ा दामन आ जाएगा हाथ मेरे आँखों का ये मेला पानी गंगा जल मैला पानी गंगा जल हो जाएगा। वाकई जब एहसास जज्बात के दरिया रवा होते हैं रात के इस पहर में तो बहुत सारी यादें झोंकों की मानंद आपके एहसास जज्बात को कहते हैं ना कि टटोलती हुई गुजर जाती हैं छेड़ती हुई गुजर जाती हैं। और इस पहर में ऐसे एहसास जज्बात जब आपके जहन में उभरते हैं तो ये कहने पर आप मजबूर हो जाते हैं कि क्या करें किस तरह इन सब चीज़ों का जवाब दिया जाए। लेकिन बात दर्द की हो रही है तो दर्द का होना ज़रूरी है आज गज़ल के पैराए में क्योंकि ये एहसास बहुत ही अहम है गज़ल के लिए और गज़ल इसके बगैर अधूरी है।

बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं होते हुजूर, और हर किसी बात का जवाब देना कोई ज़रूरी भी नहीं होता। ताहिर फराज साहब कहते हैं कि जब मेरे होंठों पे मेरी तिश्नगी रह जाएगी, तेरी आंखों में भी थोड़ी सी नमी रह जाएगी, सर फिरा झोंका हवा का तोड़ देगा शाख को, फूल बनने की तमन्ना में कली रह जाएगी, खत्म हो जाएगा जिस दिन भी तुम्हारा इंतज़ार, घर के दरवाजे पे दस्तक चीखती रह जाएगी। क्या खबर थी आएगा एक रोज़ ऐसा वक्त भी, क्या खबर थी आएगा एक रोज़ ऐसा वक्त भी, मेरी गोयाई तेरा मुंह देखती रह जाएगी। वक्त रुख्सत आएगा और ख़त्म होगा ये सफ़र, वक्त रुख्सत आएगा और ख़त्म होगा ये सफ़र, मेरे दिल की बात मेरे दिल ही में रह जाएगी।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

11:46 हिना मौज के साथ सुन रहे हैं आप प्रोग्राम रंगे महफिल आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। कहते हैं कि दर्द खामोश रहा टूटती आवाज रही, दर्द खामोश रहा टूटती आवाज रही, मेरी हर शाम तेरी याद की हमराज रही। शहर में जब भी चले ठंडी हवा के झोंके, तपते सहरा की तबीयत बड़ी नासाज रही। एक नए मोड़ पे उसने भी मुझे छोड़ दिया, एक नए मोड़ पे भी उसने मुझे छोड़ दिया, जिसकी आवाज में शामिल मेरी आवाज रही। दोस्तों, अगर दर्द की बात हो रही है तो सबसे ज्यादा दर्द लेकर आपकी मोहब्बत में आमद किसकी होती है? जी हाँ, आमद होती है मोहब्बत की। और मोहब्बत जिसके खाते में आ जाए वो हर हाल में दर्द के जज्बे से दो चार होगा ही, लेकिन यही दर्द जब सुकून में बदल जाता है तब ये और मीठा लगने लगता है। वो कहते हैं ना कि दोस्तों जान से गुजरता कौन है, दोस्तों जान से गुजरता कौन है, इश्क हो जाता है करता कौन है।

जब भी टूटा मेरे ख्वाबों का हसीन ताज महल, मैंने घबरा के कहीं मीर के लहजे में गजल। खैर मकदम को तेरे आएगा खुद ही सूरज, तो कभी रात की दहलीज से बाहर तो निकल। अपने अफसाने से दिलचस्पियां कुछ कम कर दे, नींद के बोझ से होने लगी पल के बोझल। हाथ से राह के जेवर है मुसाफिर के लिए, एक ठोकर जो लगी है तो इरादा न बदल। बोलने के लिए चाहा है मुझे उसने फराज, बोलने के लिए चाहा है मुझे उसने फराज, बंद होने के लिए खिलते हैं पानी में कंवल।

आप तो रात सो लिए साहिब, हमने तकिए भिगो लिए साहिब। दर्द की धूल गम की तेज हवा, घर का दरवाजा खोलिए साहिब। चलते चलते बस यही पैगाम दोस्तों कि गज़ल के हर जज्बे को टटोलने की कोशिश रहती है प्रोग्राम रंगे महफिल की, और ये खूबसूरत रंगे महफिल का कारवां यूं ही रोज़ रवा दवा रहेगा। इसी उम्मीद और ख्वाहिश के साथ आप सब से हिना मौज रुख्सत तलब करती है। ये आखिरी फिल्मी गज़ल आपकी समातों की नज़र कर रही हूँ। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी जल्दी ही, इस उम्मीद के साथ। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डर।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारतीय सेना ने मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की और वहां शिविर स्थापित किए। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का पारगमन फिर शुरू करने पर सहमत हुए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री कासिम गरीबाबादी ने कहा कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में टेक्सास में ब्राजील और जापान के बीच कांटे का मुकाबला जारी है। मैच में जापान ने 1 गोल की शुरुआती बढ़त ले ली, लेकिन हाफ टाइम के बाद ब्राजील ने बराबरी का गोल दागकर मैच में अभी 1-1 गोल की बराबरी कर ली है। इस नॉकआउट मुकाबले में पराजित होने वाली टीम विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप से बाहर हो जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

12:05 और 35 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है जीरो आवर शो। मैं हूँ एस एम शरीफ। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: अरे हाँ, बुलाना बुलाना, फिर जरूर सुनाएगा।
2: चल बुला, चल बुला।
1: ना बाबा ना, लो मैंने बुला।
2: हाँ तेरी तो जरूर सुनेगा।
1: अरे बुलाना। अच्छा बाबा, बुलाती हूँ, काम तो मत खाओ।
3: गोपी

0: मॉर्निंग
1: छोड़,
0: गुड मॉर्निंग
1: छोड़,
0: गुड मॉर्निंग 1 2 3 4
1: अरे 1 2 3 4 मैं कैसे हूँ? 1 2 3 4
2: तुम
1: थप्पड़
2: रखे
1: डाबरा अरे बड़ा आया अंग्रेजी बोलने वाला
0: कॉपी वाटर सैंड राइट हैंड बंदूक बैंड टिंग फटा

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा

0: एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे, विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद देश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल विधानसभा में घोषणा की कि 2 जुलाई को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। श्री अधिकारी ने बताया कि यह समिति शादी, तलाक और गोद लेने जैसे कुल 9 विषयों पर अध्ययन कर 4 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि श्री अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया कि अनुसूचित जनजाति, कुर्मी और प्राचीन मूल समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से 2 दिन पूर्वोत्तर का दौरा करेंगे। श्री चौहान असम के गुवाहाटी में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में असम और आसपास के इलाकों में बाढ़ से फसलों और गांवों में हुए नुकसान की समीक्षा करेंगे। इसके बाद श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। फीफा विश्व कप में ब्राजील राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में ब्राजील ने जापान को 1-2 गोल से हरा दिया। राउंड ऑफ 32 के एक अन्य मैच में अमेरिका के बोस्टन स्टेडियम में जर्मनी का सामना पैराग्वे से होगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच देर रात 2 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
0: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
0: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्य के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद

स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान कानून के पालन के लिए राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि 2 जुलाई को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस बिल का मसौदा पेश किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। श्री अधिकारी ने कहा कि ये समिति 4 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर राज्य सरकार संहिता तैयार करेगी। हालांकि श्री अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया कि अनुसूचित जनजाति, कुर्मी और प्राचीन मूल समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि कानून का शासन ना तो कोई कल्याणकारी योजना है और ना ही कोई आर्थिक नीति है, बल्कि ये सत्ता के इस्तेमाल को अनुशासित करता है ताकि कोई भी व्यक्ति मनमानी करने वाली सरकार का शिकार ना बने। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस सम्मेलन में अपने मुख्य संबोधन में ये बात कही। मुंबई सीमा शुल्क अधिकारियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अबू धाबी से आए 25 साल के एक यात्री को 2,38,00,000 रुपए मूल्य के लगभग 7 किलो गांजे की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले आरोपी मोइन खान को एयर खुफिया इकाई ने खास जानकारी के आधार पर पकड़ा। नशीली दवा और मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच खतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री काजिम गरीब आबादी ने कहा कि खतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। फीफा विश्व कप में ब्राजील राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में ब्राजील ने जापान को 1-2 से हरा दिया। राउंड ऑफ 32 के एक अन्य मैच में अमेरिका के बोस्टन स्टेडियम में जर्मनी और पराग्वे के बीच मुकाबला जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

2:05 हुए हैं। शुरू करते हैं प्रोग्राम भुलाए ना बने।

की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो, सुनो तो, सुनो तो।

मुस्कुराई।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि 2 जुलाई को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस बिल का मसौदा पेश किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। श्री अधिकारी ने कहा कि ये समिति 4 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि श्री अधिकारी ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित जनजाति, कुर्मी और प्राचीन मूल समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम के केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से 2 दिन के पूर्वोत्तर दौरे पर रहेंगे। श्री चौहान असम के गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में असम और आसपास के इलाकों में बाढ़ से फसलों और गांवों में हुए नुकसान की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। मुंबई सीमा शुल्क अधिकारियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अबू धाबी से आए 25 साल के एक यात्री को 2,38,00,000 रुपए मूल्य के लगभग 7 किलो गांजे की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले आरोपी मोइन खान को एयर खुफिया इकाई ने खास जानकारी के आधार पर पकड़ा। नशीली दवा और मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। अमेरिका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का पारगमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। फीफा विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में अमेरिका के बोस्टन स्टेडियम में जर्मनी और पैराग्वे के बीच मुकाबला जारी है। हाफ टाइम तक मुकाबले में पैराग्वे 1-0 से आगे है, वहीं ब्राजील राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी। एक से दो दशमलव छह मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो। रात के 3:05 और पूरे 50 सेकंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडी।

0: की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि 2 जुलाई को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस बिल का मसौदा पेश किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। श्री अधिकारी ने बताया कि ये समिति 4 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। श्री अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया कि अनुसूचित जनजाति, कुर्मी और प्राचीन मूल समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम के केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से 2 दिन के पूर्वोत्तर दौरे पर रहेंगे। श्री चौहान असम के गुवाहाटी में बाढ़ से फसलों और गांवों में हुए नुकसान की समीक्षा करेंगे। इसके बाद श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर रहेंगे। मुंबई सीमा शुल्क अधिकारियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अबुधाबी से आए 25 साल के एक यात्री को 2,38,00,000 रुपए मूल्य के लगभग 7 किलो गांजे की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले आरोपी मोइन खान को एयर खुफिया इकाई ने खास जानकारी के आधार पर

नशीली दवा और मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मूज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। फीफा विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में अमेरिका के बोस्टन स्टेडियम में जर्मनी और पैराग्वे के बीच मुकाबला जारी है। दोनों टीमें अभी 1-1 गोल से बराबरी पर हैं। वहीं ब्राजील राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। ब्राजील ने रोमांचक मुकाबले में जापान को 2-1 से हराया। अब रविवार को न्यूजर्सी के ईस्ट रदरफोर्ड में राउंड ऑफ 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM रेनबो। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सारेगामा।

0: si Terry बोली।
1: हाय हाय,
0: तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला।

0: सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
4: ठीक है।
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो आधार कार्ड है इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

0: मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो आयकर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल

0: SMS, fraud link, lottery में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
0: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
0: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
0: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: Vande Mataram.